यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे थे आराधना कार्यक्रम में नॉनस्टॉप भजन, और अब इस कार्यक्रम का ये समापन भजन, और फिर सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार होंगे।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें रविंद्र सिंह आपके साथ होंगे। सुबह 7:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें आप अपने शहर से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही गीत संगीत तो होगा ही। इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी सोनू भट्ट और सुबह 8:00 एक बार फिर से रविंद्र सिंह आपके साथ होंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। सुबह 9:00 का समय रहेगा कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने में सोनू भट्ट के साथ। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आवर हिमानी दत्ता के साथ। सुबह 11:05 पर बॉलीवुड ट्रेल्स कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, जिसमें बॉलीवुड जगत की सभी जानकारियां आप सुनेंगे और साथ ही फिल्मी गीत होंगे। इस कार्यक्रम में प्रियंका मामगेन आपके साथ रहेंगी। दोपहर 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक प्ले इट कूल का समय रहेगा हिमानी दत्ता के साथ। दोपहर 1:05 पर प्रियंका मामगेन आपके साथ रहेंगी रेनबो हेल्पलाइन कार्यक्रम में, जिसमें आज विषय रहेगा द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन।

daily life. दोपहर दो बजे का समय रहेगा कार्यक्रम आशियाना का, जिसमें स्वाति गुप्ता आपके साथ रहेंगी। दोपहर 3 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सृजन राजपूत के साथ, जिसमें आज विषय रहेगा स्किन केयर इन समर्स। एक्सपर्ट होंगी डॉक्टर पूनम पुरी। शाम 4:05 का समय रहेगा कार्यक्रम अल्फा जैन का, जिसमें स्वाति गुप्ता और ऋचा वर्मा आपके साथ होंगी। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिटी लाइट्स है, जिसमें सृजन राजपूत आपके साथ रहेंगी। दिल्ली शहर से संबंधित सभी जानकारियां आप इसमें सुन पाएंगे।

0: शाम 6:05 का समय रहेगा कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स का, जिसमें नीरज चतुर्वेदी आपके साथ रहेंगे। इस कार्यक्रम में श्रोता जो है संदेश भेजकर अपने पसंद के गीत सुन सकते हैं। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट यूज बेस्ड प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी हरप्रीत कौर। रात्रि 8 का समय रहेगा म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम का, जिसमें नीरजा चतुर्वेदी आपके साथ होंगी। रात्रि 9 आपकी याद आती रही रेखा चौधरी के साथ। रात्रि 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक रेनबो क्लासिक। इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी हरप्रीत कौर। और रात्रि 11:05 पर गजलों का कार्यक्रम होगा रंगे महफिल, जिसमें रेखा चौधरी आपके साथ रहेंगे। तो ये थी आज आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: A very good morning to all our lovely listeners. Welcome back once again to Agashwani FM Track when broadcasting live from Kohima.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्रवर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP

0: मलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय

0: ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की तीन दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने सातवें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चार पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और छह दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Center increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
4: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPI-M and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
3: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPI-M State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath of office in secrecy to Mr. Rangaswamy. More from our correspondent.
5: In stark contrast to the post-election political drama witnessed in neighboring states, Puducherry is poised to witness a swearing-in ceremony marked by political continuity, with N. Rangaswamy all set to walk into the Chief Minister's office once again. This will be the fifth term for the 76-year-old political stalwart as Chief Minister. Ministers will be also swearing in along with the Chief Minister at the ceremony. Union Minister and BJP election in charge Mansukh Mandavya, BJP National President Nitin Nabin, BJP Puducherry in charge Nirmal Kumar Surana, and State BJP President V.P. Ramalingam are among the prominent leaders expected to attend the swearing-in ceremony. Mr. Nabin, who arrived in Puducherry yesterday evening, has held discussions with the party office bearers and legislators at the party headquarters. Bibin Asnad, Akashwani News, Puducherry.
3: In West Bengal, following the change of government, the state police has adopted a stringent stance regarding law and order and past cases of political violence. In this regard, ADG Law and Order issued a detailed directive yesterday to all police commissioners, police superintendents and railway police authorities, mandating a series of immediate actions. The directive orders a fresh review of all cases related to violence following the 2021 assembly elections, including those where final reports have already been submitted. Simultaneously, the state police has ordered a physical verification of all arms and ammunition stored in police station armories to be completed by Friday. The directive also emphasizes a crackdown on cross-border smuggling and crime through regular border meetings and intelligence sharing. Following Prime Minister Narendra Modi's call for austerity amid West Asia crisis, the chief ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi have announced measures to reduce the use of official vehicles by ministers, MLAs and public representatives. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered a 50% reduction in the vehicle fleets of the CM, ministers and other officials and directed that unnecessary vehicles be removed from official convoys. The state government has stressed greater use of PNG, metro services and public transport while encouraging virtual meetings and a weekly no vehicle day. More from our correspondent.
6: Chief Minister Yogi Adityanath urged citizens to reduce fuel consumption and avoid unnecessary purchases of gold. During a meeting with the Chief Secretary, DGP and all additional Chief Secretaries and Principal Secretaries of various departments, Chief Minister directed that the fleets of the Chief Minister, ministers and others be immediately reduced by 50%. He said that unnecessary vehicles be removed from official convoys. The Chief Minister also appealed for prioritizing the work from home culture in the state. The Chief Minister said that ministers, MPs, MLAs and public representatives should use public transport at least one day a week. A no vehicle day should also be organized once every week. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
3: Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has reduced the number of vehicles in his cavalcade until further orders. In a cabinet meeting on Monday, Mr. Yadav appealed to the members of the Council of Ministers to reduce petrol and diesel consumption in the national interest and suggested the use of public transport. An official said no vehicle rallies will be organized during his visits. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also said ministers, MLAs, officials and government departments would limit the use of official vehicles, adopt carpooling and prioritize metro and bus services. The government has increased the import duty on gold and other precious metals, which will be effected from today. In a statement, the Ministry of Finance said gold and silver findings will attract 5% duty, while platinum findings will attract 5.4% duty. Furthermore, precious metal spent catalyst is set at 4.35%, subject to the fulfillment of compliance criteria. Earlier, Prime Minister Modi had appealed the citizens to avoid purchasing gold amid the ongoing West Asia crisis. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The Central Board I beg your pardon, the Central Bureau of Investigation, CBI, has taken Shubham Kernar into its custody in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on the 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. Earlier, Rajasthan Police

एक ही कलाकार हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम दे दूसरा गीत कहानी फिल्म अटनिले एटो गीत खाने म्यूजिक दिसे विशाल शेखर और लिरिक सुजय घोष उन्हें देखा सब महल्ला प्रोग्राम आगे ना लो जा गोटे और भी अपना खाना किसान मेसेजेस खान पूरी दी से आज फुजिर लॉन भी प्रोग्राम दे आएगी ना शामिल हुए किना से कोहिमाब्रा और तार को ऐसे गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी रामलीला ओके आम गाना एन्जॉय योर शो कोई गिना लिखी गिना पठाइसे लॉनी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू बहुत बहुत दिन पसते मई लगा शो ते आज आको वापस आई गिना शामिल हुआ निमित्ते अपना के स्वागत करे आसे आरो ट्यून इन करी थाकिबि किले कोइले अपनार लगा पसंदीदा गीत आरो भी बजाई दिया हो पारे तो अपनार भी प्रोग्राम ते साथ दी थाकिबि 10:20 लगे आमी हालना प्रोग्राम जाई थाकिबि ऐसे तो गीत खान शुनीकना एन्जय सपाट स्ट्रेंगी रेडियो लिस्नेस ग्रुप खान पर भी गुड मॉर्निंग विश लिखी किना पठाई वेरी गुड मॉर्निंग टू सपाट स्ट्रेंगी रेडियो लिस्नेस ग्रुप दुर्गेश नागनपुरी राधेश्याम नागनपुरी वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुम भाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार दक्षे तरखान सप्रा भी गुड मॉर्निंग विश लिखी किना पठाई आसे और गुड मॉर्निंग विश टू शुनी थका सब भी पठाई दी किना से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू दुर्गेश नागनपुरी एंड फैमिली और भी दूसरा मेसेज आईगिना से सूरज वर्मा ऋषभ कनक भावना वर्मा प्रेमलाल वर्मा निकेश हर्षिता और ममता भाई वर्मा तारखान सब भी प्रोग्राम आईगिना शामिल होगिना शुनी थका सब बिल्क और आम खान गुड मॉर्निंग विश लिखीगिना पठाई से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू सूरज वर्मा एंड family huni daga sab billa ki ate shairi bi ahigina se moi ekta git bajai dia hobo sat satte logi logi laga real time te traffic update bi ani dia hobo aro tar pasote moi apnar khan la messages khan ako loi dia hobo এইটো আকাশবাণী এফ এম ট্ৰেকপেন 110 মেগাহাৰ্টজ শুনি থকা সববিলাক এতিয়া সময় জানি দি আছে ৰেল টাইমতে কহিমা টাউন লগা ট্ৰেফিক আপডেট মন খোলাবৰা লৈ কিনা পি এইচ কিউ জাংচন মাজত লগা ৰাস্তা নৰ্থ বাউণ্ডেটো ট্ৰেফিকটো মডৰেট দেখাই আছে মানে ট্ৰেফিকটো মাজতে আছে কিন্তু চাউথ বাউণ্ডে হালকা ট্ৰেফিক দেখাই আছে আলাক ৰাস্তা ল'বলৈ মন খান আপোনাৰ খান ল'ব পাৰে অল্ড মিনিষ্টাৰ্ছ হিল পৰা লৈ কিনা জেল কলনি পি এইচ কিউ জাংচন পৰা লৈ কিনা মেজৰ জাংচন মাজত লগা ৰাস্তাৰে বি নৰ্থ বাউণ্ডে মডৰেট ট্ৰেফিক আছে মানে ট্ৰেফিকটো আছে কিন্তু মাজতে আছে চাউথ বাউণ্ডেটো হ'লে হালকা ট্ৰেফিক দেখাই দি আছে আপোনাৰ এখন আলাক ৰাস্তা ল'ব পাৰে যদি ল'বলৈ মন আছে কৰিলে মানে পাৰা মেডিকেল পৰা লৈ কিনা টি মডেল আৰু আই জি নহ'লে বা

0: and duty. Furthermore, precious metals spend catalyst is set at 4.35%, subject to the fulfillment of compliance criteria. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures of fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led DVK government's floor test today. All India NR Congress leader and Rangaswamy takes oath as Puducherry Chief Minister. India to be hosting a two-day BRICS foreign ministers meeting from tomorrow. In Jammu and Kashmir, army foiled an infiltration attempt along the line of control in Poonch district yesterday, killing one terrorist in the Krishna Ghati sector. US President Donald Trump embarks on a highly anticipated three-day visit to China. He will hold a summit with Chinese President Xi Jinping in Beijing from tomorrow. Ministry of External Affairs urges people interested in undertaking the Kailash Manasarovar Yatra to apply before the 19th of this month as registrations will close soon. Applicants can get further details and register through the official website kmy.gov.in. India Meteorological Department says conditions are becoming favorable for the advance of southwest monsoon, likely over parts of South Bay of Bengal, Andaman Sea and Andaman and Nicobar Islands towards the end of this week. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. That is all we have in this news headlines.
1: FM Tragoban.
2: 103 MHz.
1: News, music and entertainment.
2: This is FM Tragoban.
1: FM 103 MHz.
0: हाँ जी दिया लिसनर्स जी दिया सुमाने दिया से रियल टाइम दी कोई मा ट्रैफिक लगा जानकारी और ये दे कोई दिया से नॉर्थ बाउंड चले तो कोई मा लगा नॉर्थ दी जा लगा डायरेक्शन से हेडेड टुवर्ड्स बीओसी हाई स्कूल जंक्शन और साउथ बाउंड चले तो साउथ फिनी आया लगा ट्रैफिक डायरेक्शन हेडेड टुवर्ड्स बीओसी एंड न्यू मिनिस्टर सील तो मंगलार पी एच क्यू जंक्शन मा जी आसे गले नॉर्थ बाउंड डायरेक्शन दी ट्रैफिक तो मॉडरेट आसे और साउथ बाउंड डायरेक्शन दी ट्रैफिक तो लाइट दिखा आसे अलग रास्ता लोगों को लेते हो ओल्ड मिनिस्टर्स हिल टू जेल कॉलोनी तो रास्ता लोगों पारे बो पीएचक्यू जंक्शन और मेजर जंक्शन मौजूद है ऐसे गुले नॉर्थ बाउंड लाइट डायरेक्शन दिए ट्रैफिक तो मॉडरेट है ऐसे और साउथ बाउंड लाइट डायरेक्शन दिए ट्रैफिक तो लाइट दिखा है ऐसे अलग रास्ता आन लोगों पारे बो पैरामेडिकल टू टी मॉडल टू आई जी नोलिबा लेडीज माइल रोड टीसीबी और राजा पॉइंट मौजूद है ऐसे गुले नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड दुटा डायरेक्शन दिवे ट्राफिक तो मॉडरेट देखा आए यानी ट्राफिक तो इमान कमटि भी नए और इमान बेसि भी नए एक हिसाब दी जाए अलग रास्ता लो पार्ब टी सी वि टू राजू पॉइंट नलिबा बक्स काटिंग टू एन एच ए के टू सेंसेस पॉइंट नलिबा फुलबारी टू खुजोजी ग्राउंड टू राजू पॉइंट राजू पॉइंट और सेंसेस पॉइंट मजदूरी हमें नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड दिवे ट्राफिक तो लाइटे आए এইটো নিচিনা হাই স্কুল জাংচন টু চেঞ্চেছ পইণ্ট আৰু এন এইচ এ কে জাংচন টু চেঞ্চেছ পইণ্ট এইটো দুটা পইণ্ট মাজত দিবি নৰ্থ বাউণ্ড আৰু চাউথ বাউণ্ড দিবি ট্ৰাফিকটো লাইটে দেখাই আছে এইটো আছে আপুনি আনি দিয়া শুনিলে ৰিয়েল টাইম দি কৈ মই ট্ৰাফিক লাগে জানকাৰী আকৌ আগে ভৰাই না প্ৰগ্ৰাম আনি দিবলৈ আছে উইমেন টাইম
3: আজিকালি কাৰ্বনেটেড বিভাৰেজেছ খান খাটো বেছি হৈ যায় আছে স্পেচিয়েলি বাচ্চা খান আৰু নজাৱান খান লগাৰ মাজতে ইটো খাটো গাঁও নিমিতে ভাল নাই কিলে কৈলে ইটো কাৰ্বনেটেড বিভাৰেজেছ খানতে কেলৰিজ বেছি থাকে আৰু নিউট্ৰিশ্যন বি একো নাপায় কিলে কৈলে ইটো ড্ৰিংকছ খানতে ভাইটামিনছ আৰু মিনাৰেলছ খান নাথাকে ৰিচাৰ্চ কৰা টাইমতে পাওঁ ইটো কাৰ্বনেটেড বিভাৰেজেছ খানতে হাই পাৰ্চেণ্ট আৰ্টিফিচিয়েল চুগাৰ আৰু ফুড গ্ৰেড এচিডছ থাকে ইটো বেছি খাটো ওজন বেছি হৈ যায় অবেচিটি টাইপ টু ডায়েবেটিস আৰু দাঁত বিয়া হৈ যায় আৰু দাঁততে ইনফেকশ্যন খান বি হৈ যায় ইটো কাৰ্বনেটেড বিভাৰেজেছ খান খা বদলি লাচি নাৰিয়েল পানী চুগাৰ ফ্ৰী স্মুডিজ আৰু ফ্ৰেছ ফুড জুচ খান খাইলে ভাল আছে যোনটো খান খাবলৈ বি ভাল আছে আৰু হেল্ডি বি আছে ইটো জানকাৰী দি আছে ফুড ছেফটি নাগালেণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ
4: FM HIV AIDS Act Hajan Nido Antiknyat Kamthan Arti Yandibu Hoba Violet Bu Shanga
5: Pandawai Didashi HIV

0: एड्स का कमनन किला होबा तपत पु एक आचरणी दो आदि यत को एचआईवी शात पाउबु होबा हो शादाई लाप पु पत लशंगा के
1: हो एक टाइ एचआईवी शात किबु मत जे को हवन टेडो चौगो कमसिले कमहांगा वेदो शिबुआ मंगसी साउ चौशांगा होबा लुबु काउटा कमदना पुरन फोदा
0: हबुंग एदिबु नागलिन स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी तांगुगा कुदा
2: FM Dragoban
3: 103 MHz
2: News, music and entertainment
3: FM Dragoban
2: FM 103 MHz

0: Εκείνη από την σκανφίση που έζησε μου.
1: Είναι κατά την αμύτω δεν τη βουλή να πάρει να βουλή το αγίτσα ιδέ. Το θέμα because ότι κοινικά χωρί που είναι sale. Every day το sale είναι αμπαλβάζον τσάγω να πάρει τσάγω. Το slow χωρί τσάγω. Άρα γόρλα καρτσάβει ούτω τέμπτε. Άρα εκεί σα τσάγω λαγέ.
0: तो दीदी अपनी गेम में दूसरा हो दूंगा अपने लगा सबसे दंग और दुख दिख जाए रुकिए से घोर और वो बिजनेस मैनेज किया दे
1: तो कोई भी ना दुख अमी बच्चा हाल के सबुना बिजनेस खोला वो इनका भावना के अंदर अमी तो एक तब बैलेंस को पाया रो मोला मोटा ला सपोर्ट करो है फिर से मैंने कहा एक पाल की टी टेंडे अमी बिजनेस तो जुकाम भी रुकी दे अभी सबसे दुख एक तब तो वो मंजा रो अमी दुकान दुकानदार हो गई तो आसानी मोह है तब तो शेयर भी होगा लगे अरो अमी कुंभ कस्टमर रो बाकी निदिशी को तो कुंभ तो दिया पाई जाए कितना बाद ना तो बाकी दे अमी बाकी वाला भी संबंध लो है तो कि टाइम भी निदि जाए अरो अनाली बिजनेस तो इन्हीं इन्हीं रो पूरा नहीं है तो सारो आराम बना पाई ना मानी लोन भी वो है पूरा ना तो क्या हमारे दे सेल भाव नहीं शुरू ले आरो खर्चा पानी घोर करनी भी मान आगे पीछे हो जाए लिमिट हो जाए आरो बच्चा हाँ ना एजुकेशन करनी भी भागना दिलो लगे तो हाँ ना फीस दे रहा हो ले ठीक टाइम पे ना पाया लगे दुखी हो जाए कितना
0: तो बिटो बिटो ला खर्चा ना जने ला खर्चा बिशेस ना तो अपनी रो बिटो ला खर्चा बिशेस कुदिश ले मान दो हनी थगे खर्चा तो मैं क्या नंदो भाल रख चलाए ना भाल रख लिए से मेरे भी बिटो ला खर्चा एकदम ना जने ला खर्चा तो बिशेस तो
1: मान भी कोशिश तो कर दे मान भी अमाइ का कोई भी ना ना बच्चा हाँ ना चुप्पू मतो खाना होगी अरो खाना
0: तो अपनी ला कहानी दो ना बिशी भाल रखूं दिया से अपनी किन्हार ना ऐसे बिजनेस रन क्रिया लगा मैं कि घोर दे भाल एक तामा बिशी भाल रख बैलेंस करना जाने पासे
1: पूरी दो ना इन्हें कोशिश करना जावो दुख तो ना पहले मानो तो खुबले नहीं
0: हुई दो ना बहुत सा कुछ ऐसे तेरे दुख रो लगे क्योंकि वो लगे तो क्योंकि खर्चा तो एकदम लोकल खर्चा से कितने आगे रह जाओ तो निम दे रेडी हो ले तो ये से
1: सोसाइटी दी बुआरो
0: दिवोले ला
1: दिवोले जमाना
0: रस्ता
1: बिशी खड़ी जाए और टैक्स की तेरा वो लगी तो ना ना बबिया ला क्योंकि मनुहान ला से डोनेशन हल्दी आई जाए तो उसे भी मान अरो एक्स्ट्रा अलग कमाई थी भी उसे भी अमामी निदिली भी दुख ना तो वो लगी जाए तो उसे भी दुख
0: तो सब लोग रे हाथ मिलाए ना जाओ लगे तो सब क्यों पूछे ना हो सब सिक्का बाल रखो तो अपनी ये बिशी भाल रहा अपनी ला एक्सपीरियंस कान कहानियाँ नहीं आता बिशी खुशी है से तो इन्हीं कोता आरो कहानी को तुम लोग प्रिया के दे अपनी यारों ला सकता हो वीडियो इनला कहानी होनी आता बिशी इंटरेस्टिंग है से एकदम खुशी पास से तो ये तो कहानी को तुम लोग प्रिया के दे मैं अपनी ये आखिरी देखो दिवो अपनी लगा घोर परिवार बिजनेस लगे ला खर्चा अपनी किन्या उठावले पड़े ये तो सब जीतो पड़े
1: अगले देखो आज इसमें तो अमी आसानी तो करने बिजनेस सभी और भी गोल भी सब तो भी आसानी तो करने दे और तो भी अमी लगा मोटा लगा सपोर्ट रहे पारी दिना जाइए और तो एक तक हो
0: अच्छा
1: अमी तो गोल कर्चा और बिजनेस कर्चा तो ना अमी ये भी तो आसानी तो करके ना कान एक तो भावना दी ना प्लानिंग और स्ट्रेटजी इना को मिल मिला ना माने बिजनेस ला अप एंड डाउन ला आई वो ना लेकी इन्हें अलग पोशियम यू रहा
0: बुनाई की ना रखी हुई लगी
1: ओपन नीचे सब साइड ना रखी हुई लगी इन्हरा उन्हें है अभी हम तो पारे भी ना जाओ अरो मुझे तो की कुरे कुरे अभी तो बजट भी ना सेपरेट कुरे
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ कंफ्यूज नो बोले करी ना अरो मुझे इनकम दो सपा सपी रहा जानू ले कि मान प्रॉफिट ते जा से मेरे कि मान लॉस ते जा से तो जानू वो करने अमी तो रजिस्टर का मेंटेन कोई दे
0: तो तो बिश बाल आइडिया एक तक उसे अपनी
1: और इसलिए नहीं अमी इमरजेंसी फंड को नहीं कितना वो तो रखे माने लाभ भी आते हैं जब वो ले फेकावले जगह का अंशी को लेना तो महिला सेविंग्स एंड अनएक्सपेक्टेड

0: year 2027, RBI to hold rates this fiscal, says Morgan Stanley economists. Amid demands from women and some political parties for implementing prohibition, Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay orders closure of 717 state-run retail liquor outlets, including 276 shops near places of worship across the state. Tripura leads Northeast in PM Kusum implementation, 8,364 solar pumps installed. In Maharashtra, 6 people were killed and 15 were injured after a wall collapsed during a religious gathering in Jat Tehsil of Sangli district. Ugandan President Yoweri Museveni, 81, sworn in for a record 7th consecutive term after securing a landslide victory, further extending his rule as one of the Africa's longest-serving leaders. Bangladesh is facing a severe measles outbreak as deaths rise to 424, with thousands of confirmed and suspected cases reported. And in today's fixture, Royal Challengers Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Jaipur. The match will begin at 7:30 p.m. That is all we have in this news headlines.
1: FM Tragoban. News, music and entertainment. FM 103 megahertz.
2: Fry kuria homoy tel laga bishi properties kan bodli hoi jai aru eke tel tu bar bar cholaile total polar compounds TPC tu banai jai itu compounds kan tu kau karune biya ase aru itu para kisim bimari ulai de juntu khan ase hypertension atherosclerosis Alzheimer's disease aru liver bimari consumers khan laga health tu bachai kina rakhibo karune FSSAI para TPC laga limit tu 25% rakhi kina ase aru itu limit uporte vegetable oil tu na cholabo lage apuni laga health tu bachai kina rakhibole itu kodam khan lobi fry kuribole vegetable oil hi cholabi pariyata cooking oil tu ekbar hi cholabi খালুয়া ফ্রাই কুড়ি কেন বাচিয়া তেল তো ফিল্টার কুড়ি কেন খালি একবার হি চলাবি বাচি কেন থাকা তেল তো দুই দিন ভিতরতে চলাই লবি সবজি তো কমটি টেম্পারেচারতে ফ্রাই কুড়িবি তেল গরম কুড়িয়া সময়তে তেল পাড়া ধুঙা উলাব না দিব লাগে ফ্রাই কুড়িয়া সময়তে খালুয়া টুকরা খান তো কালা নোহা আগেতে বার বার উলাই থাকিবি ফ্রাই কুড়িবলে কারণে ফ্রাইয়ার নহলিবি স্টেইনলেস স্টিল বর্তন হি চলাবি টেস্ট আর গুণ বিয়া না ওলাব কারণে লোহা লাগা কারাই খান হি চলাবি ইটু জানকারি দি আছে স্টেট ফুড সেফটি অথরিটি Department of Health and Family Welfare.
3: मार्केट के बारे में क्या
4: परफॉर्मेंस का बोलो
3: बी द फ्यूचर
4: मार्केट ट्रेंड देख
3: सुनने में आया कि
5: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
4: माय प्रेडिक्शन इज
5: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
4: मेरे दोस्त ने बोला
6: देवी जी की सुनो
7: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स

विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से ये कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, जिंदगी हर क्षण प्रति क्षण बदल रही है। इस बदलते हुए समय में, बदलती हुई जिंदगी में एक चीज जो हमेशा हमारे साथ रहती है वो है हमारी सांसें, ब्रेथ। जिंदगी की शुरुआत सांसों की शुरुआत से होती है तो जिंदगी का अंत भी सांसों पर ही टिका रहता है। शरीर में सांसों का आना जाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। कहें तो सांस लेने की ये प्रक्रिया एक शुद्ध विज्ञान है। जिसे हम ठीक से समझ लें तो हम अपनी कई सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी पा सकते हैं। योग के एक सूत्र में कहा गया है, चलय वाते चलम चितम निश्चलय निश्चलम भवेतः। इसका अर्थ है, जब सांस चंचल होती है तो मन भी चंचल होता है और जब सांस स्थिर हो जाती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। ये सूत्र, ये श्लोक सांस लेने की प्रक्रिया और मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य के बीच सीधा और गहरा संबंध स्थापित करता है। ब्रीथिंग इज अ वेरी पावरफुल प्रोसेस। सांसों की इसी शक्ति को समझने के लिए आज हम रेनबो हेल्पलाइन में टॉपिक लेकर आए हैं, द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट हैं श्री अर्जुन गौड़, वेलनेस एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी अर्जुन, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज का जो टॉपिक है उसमें दो वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक तो ब्रेथ वर्क है और दूसरा माइंडफुलनेस है। तो हम आसान से शब्दों में इन दोनों शब्दों को समझना चाहेंगे जिससे कि टॉपिक को हम और अच्छे से समझ सकें।

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी लिसनर्स का जो हमारा ये शो अभी सुन रहे हैं। सो ब्रीथिंग ब्रेथ वर्क माइंडफुलनेस का ही एक तरीके से एक हिस्सा होता है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है जब आप अपने माइंड, हम अपने बॉडी और हम अपने इमोशंस को प्रेजेंट में रखें। अभी का समय क्या है, इस समय हम क्या सोच रहे हैं, इस समय हम क्या कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह फोकस कर सकें, उसको बहुत एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं माइंडफुलनेस,
1: प्रेजेंट में रहना,
0: प्रेजेंट
1: वर्तमान में रहना।
0: जी
1: अक्सर क्या होता है कि हम लोग या तो पास्ट में चले जाते हैं, पुरानी बातों को सोचते हैं, या फिर फ्यूचर के प्लान्स बना रहे होते हैं।
0: जी
1: तो इसका मतलब है कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, जब हम वर्तमान में रहना जीना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे टेंशन, स्ट्रेस, एग्जाइटी को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं पूरी तरह। और वर्तमान में रहना ही जीवन का एक सबसे बड़ा अमूल्य चीज होती है।
1: जी बिल्कुल। तो यानी अगर हम अपनी सांसों को कंट्रोल करें, सांसों पर ध्यान दें, तो हम प्रेजेंट में रह सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: यानी इसको अचीव किया जा सकता है, दोनों वर्ड्स को अचीव
0: बिल्कुल
1: किया जा सकता है। जी हाँ, आज का टॉपिक है द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इज डेली लाइफ। आप हमारे साथ सीधे स्टूडियो से जुड़ सकते हैं, दो फोन लाइंस हैं जिन पर कॉल करके आप सीधे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, उन्हें अपने प्रश्न बता सकते हैं और उनके समाधान पा सकते हैं। नंबर है 011-2342-1080 और दूसरा नंबर है 011-2342-1084। इसी के साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9868107070। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं और सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से।

0: सांसों की बात चल रही है रेनबो हेल्पलाइन में, क्योंकि आज हम टॉपिक लेकर आए हैं द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं श्री अर्जुन गौड़, वेलनेस एक्सपर्ट, और एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे उनका सवाल जानते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप, और प्लीज अपना सवाल पूछे।
1: जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी राजेंद्र,
1: सबसे पहले तो एंकर मैम का गुड आफ्टरनून,
0: वेरी गुड आफ्टरनून,
1: और टॉपिक रिलेटेड एक्सपर्ट सर को भी गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून सर।
1: सर मेरे तीन चार छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि सांस लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। कई लोग ऐसा होता है नाक से ही सांस लेते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं, कई लोग मुंह से सांस लेते हैं मुंह से ही छोड़ते हैं, इसका सही तरीका बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल कि सर ये मशीनी युग है, तो जाहिर सी बात है कि हमें युग और दशक और शताब्दियों का हम सेकंडों मिनटों में करके देने हैं, तो दूसरा तरीका ये बताएं कि क्वालिटी और स्पीड और कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमें कोई फिजिकल मेंटल वर्क कैसे करना चाहिए, कोई डाइट उसकी, कोई एक्सरसाइज। तीसरा सवाल मेरा ये कि सर कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम पास्ट और फ्यूचर में ना जाके प्रेजेंट पे ही अपने आप को फोकस कर सके, कॉन्सेंट्रेट कर सके। और चौथा और आखिरी सवाल कि जब हम सुबह से अर्ली मॉर्निंग और उठते हैं, नींद से जागते हैं, तो हमारा फ्रेश माइंड होता है, तो क्या कोई ऐसी दवा है या कोई तरीका है या कोई डाइट है कि हम ऐसी 24 घंटे अपने माइंड को ऐसी ब्लैंक और फ्रेश रख सके, बड़ी मेहरबानी, प्लीज गाइड करें।
0: जी बिल्कुल, आप प्लीज सुने सब आंसर, एक्सपर्ट आपकी जो सवाल जवाब दे रहे हैं। हाँ जी प्लीज।
2: सो जो ये इन चार सवाल हैं हमारे व्यूअर के, लिसनर के, सो ये चारों सवाल के आंसर मैं कॉमन स्टेटमेंट में ही देता हूँ, तो चारों के आंसर हमें एक साथ कवर कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
2: तो पहला इन्होंने पूछा था कि हमें ब्रेथ लेने का हमारा सही तरीका क्या है।
0: जी।
2: तो ब्रेथ लेने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो प्राकृतिक ब्रेथ, नेचुरल ब्रेथ हम जिस तरीके से ले रहे हैं, आराम आराम से रिलैक्स होके अपनी सांसों को बिल्कुल नियंत्रण में रखते हुए धीरे धीरे लेना है, बहुत तेज बहुत स्पीड में ब्रेथ नहीं लेना है। दूसरा तरीका यह है कि आपका ब्लड प्रेशर और आपका उस टाइम पे मूड सिचुएशन किस तरीके की है, और आप अपनी अगर ब्रेथ पे अवेयर हो आप कि आपके ब्रेथ ऐसा तो नहीं एकदम से फास्ट हो गई है बिकॉज आपकी सिचुएशन आपकी एग्जाइटी से कनेक्टेड हो, तो उसके हिसाब से अपनी ब्रेथ को स्लो डाउन करना है। अपनी ब्रेथ को कंट्रोल और नियंत्रण करने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी ब्रेथ अभी कंट्रोल में नहीं है, बहुत तेज है या बहुत ही ज़्यादा स्लो है, आंखें बंद करिए और अपनी ब्रेथ पे फोकस करना धीरे धीरे शुरू करिए, आपकी ब्रेथ धीरे धीरे अगले कुछ सेकंड्स और मिनट्स में कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। सो ब्रेथ को लेने का एक अच्छा तरीका है वो प्राकृतिक तरीका जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, आराम से लीजिए ब्रेथ और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। माइंडफुलनेस हमेशा यही सिखाता है कि प्रेजेंट में कैसे रहना है।
0: जी बिल्कुल।
2: और इन्होंने भी क्वेश्चन यही पूछा है कि हमें प्रेजेंट में फ्रेश हमेशा 24 घंटे कैसे रहना है। देखिए हम लोग नेचुरल सी बात है, हम लोग लाइफ में जिंदगी में होते हैं जहाँ संघर्ष भी होते हैं, जहाँ पे कठिनाइयाँ भी होती है और हमें उसको फेस करना भी पड़ता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो
0: प्रोफेशनल।
2: अब जब संघर्ष और कठिनाइयाँ आती हैं तो हमारी ब्रेथ और हमारी सांसों में भी थोड़ी बहुत संघर्ष और कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती है, ऐसा हमें फील होता है। लेकिन जब हम डेली रूटीन में प्रैक्टिस में लेके आते हैं ब्रेथ वर्क को, जब हम ब्रीदिंग को हर रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करें, ऐसा नहीं है आपको हर रोज आधे घंटे बैठ के ब्रेथ वर्क करना है, 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करना है ब्रीदिंग।
0: अच्छा, बिगिनर्स के लिए इनफ है।
2: यस, बिगिनर्स के लिए शुरू में एवरीडे 10 मिनट्स मॉर्निंग में इनफ है।
0: क्या बात है, ये तो बहुत छोटा टाइम है, कोई भी निकाल सकता है।
2: बिल्कुल। तो जब हम 10 मिनट अपने आप को ब्रीदिंग में डालेंगे तो 21 दिन के बाद, 22 दिन के बाद, 1 महीने के बाद हम देखेंगे हमारी ब्रेथ ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आनी हमारी शुरू हो गई है और हमारी थॉट प्रेजेंट में आनी शुरू हो गई है। तो जैसे मैंने बताया जब लाइफ में संघर्ष आते हैं तो हमारी थॉट्स प्रेजेंट में ना रह के पास्ट में जाती है या फिर फ्यूचर में जाती है या ओवर थॉट क्रिएट होना शुरू हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल वाटर, पानी पीजिए, रिलैक्स करिए, आंखें बंद करिए, 2 मिनट अपने आप को ब्रेक दे के अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए, आप प्रेजेंट में आ जाएंगे।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ एक मैसेज आया है श्री राजकुमार जी का त्रिची तमिलनाडु से। वो कहते हैं कि थैंक्स फॉर टेकिंग अप अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू टुडे, ग्रेट टॉपिक ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस। तो आपको बहुत बहुत बधाइयां एक्सपर्ट। इसके साथ एक और मैसेज आया है जी, पैंथर टोमर लिखते हैं कि क्या ब्रीदिंग से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है और सांस में नियंत्रण कैसे फोकस को सुधारता है, कंसंट्रेशन को सुधारता है, ओवरथिंकिंग को कैसे रोकता है?
2: ब्रीदिंग से बिल्कुल इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है 100%। देखिए हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमारी ब्रेथ से जुड़ी हुई है, हमारी सांस से जुड़ी हुई है। जब कोविड आया था तब भी हम लोगों में जब इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हुआ था तो उसमें ब्रीदिंग हमेशा सजेस्ट की जा रही थी कि एक अच्छा ब्रेथ वर्क आपके लंग्स को बेटर कर सकता है, आपके हार्ट को बेटर कर सकता है, आपके इवन ब्लड प्रेशर को बेटर कर सकता है। तो ब्रीदिंग इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ज़रूरी है ब्रेथ को एक राइट डायरेक्शन से करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं या सीवियर पैनिक अटैक है या प्रेगनेंसी के टाइम भी, उस टाइम पे ब्रीदिंग स्पेशली प्रैक्टिशनर या जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी गाइडेंस में करना चाहिए, उनके बिना नहीं करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। एक मैसेज आया है दिनेश कुमार का नेपाल से। वो लिखते हैं कि वो 38 साल के हैं और सीढ़ी चढ़ते हुए उनकी सांस मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जो स्पीड है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में वो नॉर्मल जैसे सांस लेते हैं वैसे ही लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि क्या इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जब सीढ़ी चढ़ते हुए सांस तेज़ हो जाती है तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, उनको वक्त ज़्यादा लगता है चीज़ों को काम करने में, तो क्या इसको सुधारा जा सकता है?
2: बिल्कुल सुधारा जा सकता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जब वो सीढ़ी चढ़ते हैं या कोई ट्रैक करते हैं या जब जब कोई हाइट पे चढ़ते हैं तो वो अपनी सांसों को नोज से ही इनहेल करें और नोज से ही एक्सहेल करें, माउथ से एक्सहेल ना करें उस टाइम पे। क्योंकि बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं जब वो कोई ट्रैक या कोई हाइट चढ़ते हैं तो नोज से इनहेल करते हैं बट माउथ से एक्सहेल करने शुरू कर देते हैं तेज तेज तेज तेज तेज तेज, तो उससे उनका शरीर बहुत हांफना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से जो बॉडी है और ज़्यादा टायर्ड और ज़्यादा ड्रेन्ड होनी शुरू हो जाती है,
0: क्योंकि एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है इस प्रोसेस के लिए। जी जी। तो यानी नाक से ही सांस लें जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, तो नाक से ही लें और नाक से ही सांस को छोड़ें, इनहेल और एक्सहेल करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही सटीक सवाल। सचिन कुमार लिखते हैं कि आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दिल्ली NCR में रहते हैं, ऐसे में अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए क्या ब्रीथिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक कारगर है?
2: पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है मेट्रो सिटीज़ में, ना कि सिर्फ दिल्ली NCR में, मैं तो कहता हूँ मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में आजकल पॉल्यूशन बढ़ गया है काफ़ी। और ब्रीदिंग जाहिर सी बात है ब्रेथ लेना पॉल्यूशन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसमें थोड़ा सा हमें अपनी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जब हम निकलते हैं बाहर तो मास्क का यूज़ कर लें, और घर में जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है घर में थोड़ा सा अपने प्लांट्स लगा के रखें, थोड़ा घर में भी ग्रीनरी लगा के रखें, जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट ऑक्सीजन मिलता रहेगा और उस एनवायरनमेंट के अंदर जब आप ब्रीदिंग लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। जब आप इनहेल कर रहे हैं, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा फ्रेश फील कर पाएंगे।
0: जी बिल्कुल। एक मैसेज आया है दिल्ली से श्यामलाल जी का, वो लिखते हैं कि वो 66 साल के हैं, 66 ईयर ओल्ड हैं, बीपी और हार्ट प्रॉब्लम है उन्हें, और वो चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि क्या ब्रेथ वर्क से और ब्रेथ एक्सरसाइजेस से बीपी और हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ फ़र्क पड़ सकता है, लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो सकती है?
2: देखिए ब्रीदिंग जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ब्रीदिंग हर एज ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर एज ग्रुप के लिए ब्रेथ वर्क का जो तरीका होता है, जो स्टाइल होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर हम 66 साल के एक पर्सन के लिए ब्रीदिंग सजेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी मेडिकल कंडीशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो डॉक्टर की सजेशंस क्या है उनके लिए, उनकी करंट मेडिकल सिचुएशन क्या है, उसके बेस पे ही उनको पर्सनल गाइडेंस के बेस पे ब्रेथ वर्क एडवाइस किया जा सकता है। लेकिन स्टिल धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल वो हर रोज़ मॉर्निंग में करें, खाली पेट करना है, और अगर किसी के पास समय नहीं भी मिलता है तो कोशिश करें खाली पेट 2 घंटा, या तो सुबह जब भी ब्रेथवर्क कर रहे हैं उससे पहले खाली पेट हो 2 घंटा पहले और बाद में भी।
0: जी बिल्कुल, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसी के साथ हमारी 2 फोन लाइन्स हैं जो स्टूडियो से अटैच्ड हैं, आप इन फोन लाइन्स पर फ़ोन करके भी हमारे एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या या सवाल को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर है 0112342108 4 और 0112342108 0

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आधुनिक युग, भागदौड़ भरी जिंदगी, एक साथ कई सारे काम करने का दबाव, घर, ऑफिस, रिश्ते नाते, सोशल लाइफ और इन सभी के बीच हिचकोले खाती जिंदगी, तो ऐसे में क्या हम जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं? या जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए, सही लाइन पे लाने के लिए हमें अपनी सांसों को कंट्रोल करना होगा, हमें अपनी सांसों को एक सही दिशा में लेकर जाना होगा, सही तरीके से सांस लेनी होगी। आज हम इसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हेल्पलाइन टॉपिक है द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट अर्जुन गौड़, वेलनेस एक्सपर्ट आप हैं, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्सपर्ट, एक मैसेज आया है, पैंथर तोमर जी ने ही भेजा है दिल्ली से, वो पूछते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में क्या अंतर है?
7: सो मेडिटेशन माइंडफुलनेस का ही एक हिस्सा होता है। माइंडफुलनेस सुबह मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन थेरेपी है, हमारे योग का हिस्सा है। और मेडिटेशन करने से सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस कर पाते हैं अपनी थॉट के ऊपर। और माइंडफुलनेस का भी एक जो आउटकम हम कहें वो यही होता है, जब अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को और अपनी बॉडी को प्रेजेंट में लाना। तो मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन थेरेपी है और माइंडफुलनेस का ही एक हिस्सा होता है।
6: जी बिल्कुल। रूबी का मैसेज आया है दिल्ली से, वो कहती हैं कि ब्रेथ वर्क की टेक्निक्स हैं तो वो प्लीज शेयर कीजिए।
7: ब्रेथ वर्क की रूबी का बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, और वैसे बेसिक टेक्निक्स का मैं आपको यहाँ पे थोड़ा शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले सुबह, अगर आप बिगिनर हैं, सुबह 5 या 10 मिनट नोज से इनहेल और नोज से एक्सहेल 3 राउंड्स 20-20 टाइम्स के करने हैं आपको। जब आप 3 राउंड्स 20-20 टाइम्स करेंगे, नोज से इनहेल, नोज से एक्सहेल, धीरे धीरे स्लोली स्लोली सांसों को इनहेल करना है और सांसों को एक्सहेल करना है। और कोशिश करिएगा खाली पेट करें ब्रेथ वर्क, और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है बिफोर ब्रेथ वर्क आल्सो।

0: सो अपने आप को नॉर्मल रखना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है, अपने थॉट्स को डिसकनेक्टेड रखना है. जब आपका ब्रेथ वर्क 3 times 3 rounds हो जाता है, नोज से इनहेल और नोज से एक्सहेल, उसके बाद अपनी बॉडी को इमिडिएटली एकदम नहीं उठना है ब्रेथ वर्क करके, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, 1 minute आंखें बंद करके बैठना है और फिर अपनी बॉडी को मूवमेंट करना है और डिजिटल एक्सेस बिल्कुल नहीं करना है.
1: जी बिल्कुल. एक मैसेज आया, वो लिखते हैं कि क्या स्ट्रेस को कम किया जा सकता है इस टेक्निक से, ब्रीथ लेने की टेक्निक से?
0: 100% ब्रीथिंग से तो स्ट्रेस को कम किया, बिल्कुल उस टाइम पे तो खत्म ही किया जा सकता है, क्योंकि ब्रीथिंग एक ऐसा फॉर्मूला है जो कभी भी फेल नहीं हो सकता है स्ट्रेस को खत्म करने के लिए. देयर आर मल्टीपल, यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल थेरेपीज हैं, बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक्स हैं जो लोग स्ट्रेस के लिए काउंसलिंग भी लेते हैं, काफी चीजें हैं और बहुत हेल्पफुल होती हैं. आयुर्वेदा में बहुत कुछ है हेल्पफुल होता है. आयुष मंत्रालय इतना अच्छा काम कर रहा है, हर रोज अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं श्वास को लेके, योगा को लेके, आसन को लेके. सो ब्रीदिंग एक ऐसा थेरेपी है जिस जो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए 100% हेल्पफुल हो सकती है, अगर आप राइट तरीके से राइट ब्रेथ वर्क कर रहे हैं.
1: जी बिल्कुल. एक और मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि सांस लेने का जो तरीका है वो किस तरीके का होना चाहिए, और एक आपने कोल्ड थेरेपी, कोल्ड वाटर थेरेपी भी बताई थी रात को, तो मुझे लगता है कि अगर आप ये भी शेयर करें तो जो लिसनर्स हैं उन्हें बहुत फायदा होगा.
0: बिल्कुल, जैसा कि हम लोगों की लाइफ डेली रूटीन में बहुत तेज चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है, हम चाहे दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, घरों में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, रात को हमारी बॉडी बहुत थक जाती है. आज आप देखिए मोस्टली लोग टायर्ड हैं, काम की वजह से नहीं, वो टायर्ड हैं, उनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा चैनलाइज हो जाती है. सो रात को सोने से पहले ज़रूरी है सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, डिजिटली बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाएं और दोनों पाँवों को अपने कोल्ड वाटर में डाल लें. जब दोनों पाँवों को आप थोड़ी देर कोल्ड वाटर में डालेंगे, आँखें बंद करें और अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करें. स्लोली स्लोली इनहेल, स्लोली स्लोली एक्सहेल,
1: नाक से ही करें,
0: नाक से इनहेल, नाक से ही एक्सहेल, और आपके दोनों पांव उस टाइम कोल्ड वाटर में होंगे. okay. और आपके जो हाथ हैं, आपके जो पाम्स हैं वो ओपन होंगे और आपके लैप के ऊपर होंगे, सो दैट अपने आपको आप रिलैक्स फील कर सके. आपकी बॉडी पोजिशन भी बिल्कुल रिलैक्सड होनी चाहिए, बहुत टायर्ड ना हो, बहुत अपनी बॉडी को स्ट्रेस देने की इस टाइम जरूरत नहीं है. थोड़ी देर करने के बाद कपल ऑफ मिनट्स, जहाँ जब तक आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उसके बाद पाँव निकालिए और उसके बाद आप सोने जाइए, आपकी जो नींद है पूरी तरह सात्विक होगी.
1: क्या बात है. एक और मैसेज आया है अनीता का, वो लिखती हैं कि उनकी बेटी 12th में है, नीट की तैयारी भी कर रही है, उसे बहुत स्ट्रेस रहता है, किस तरीके से वो और किन तकनीक से, ब्रेथ वर्क की टेक्निक से वो फ़ायदा ले सकती हैं, क्या वो बेटी को सजेस्ट करेंगी?
0: अक्सर ऐसा होता है, अक्सर जैसे मैं भी अपने कोचिंग सेशंस में देखता हूँ, यूजली जो टीन एज होता है या जेंजी है उसमें मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि ब्रेथ वर्क की प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि बॉडी को रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस हमने डाली नहीं. तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेथ वर्क जब ही सक्सेस हो सकता है जब हम हर रोज उसे प्रैक्टिस में, डिसिप्लिन में और कंसिस्टेंसी में डालें.
1: जी.
0: क्योंकि आफ्टर 21 days और 25 days जब आपने इसको कंसिस्टेंट कर लिया, डिसिप्लिन कर लिया, तो ऑटोमेटिकली देखेंगे आपका स्ट्रेस, चाहे वो एग्जाम की वजह से है या फिर आपकी डेली परफॉर्मेंस की वजह से है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं इन अ वेरी वेल मैनर. और उस बच्ची के लिए जो 12th में है और नीट के एग्जाम की तैयारी कर रही है, उसके लिए मेरे पास बच्ची के लिए एक ही आंसर है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. प्रेजेंट, जैसा हम यहाँ माइंडफुलनेस की बातें कर रहे हैं, फोकस करें अपनी स्टडी पे, फोकस करें अपनी ब्रेथ पे, और ऐसा ना हो कंटिन्यू बच्चा पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है. ब्रेक ले, 5 मिनट का ब्रेक ले, पूरे दिन

0: दिल्ली से लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज के हेल्पलाइन का। वो कहते हैं कि अक्सर आज
1: को अपनी बॉडी को ठहराव में लेके आना, स्टेबल करना, राइट। तरीका मल्टीपल तरीके होते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के, ये एक सच्चाई है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी की, आपकी इम्यून सिस्टम की या आपके लंग्स की रिक्वायरमेंट उस टाइम क्या है, आपकी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन या आपकी हेल्थ कंडीशन उस टाइम क्या है, उसके बेस पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सजेस्ट की जा सकती हैं।
0: जी बिल्कुल। कपिल गुप्ता जी हैं दिल्ली से, वो आपको वेरी गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून अर्जुन सर। साथ ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि लाइफ में सब कुछ है फिर भी मन कहीं नहीं लगता है, क्या किया जाए? मुझे लगता है माइंडफुलनेस।
1: बिल्कुल,
0: प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं पास्ट या फिर फ्यूचर की तरफ भागता है मन।
1: बिल्कुल सही बात है। और कपिल गुप्ता जी ने जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मन शांत नहीं है। क्योंकि मन अशांत इसलिए है क्योंकि बहुत सारी अननेसेसरी अशांत चीज़ों को हमने अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में रखा हुआ है। और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस यू नो क्या कहती है, जितनी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है, हमारे मतलब की नहीं है, मतलब कोई सिचुएशन जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, राइट, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली हम एकदम से हमारे पास कोई बटन नहीं है अचानक से हम स्विच ऑन स्विच ऑफ कर ले, राइट। ब्रीदिंग एक ऐसा बटन है जिसमें हम प्रेजेंट में तो आ सकते हैं कम से कम। तो जैसे ही ब्रीदिंग का बटन स्विच ऑन करेंगे और हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, सो माइट बी हम लोग अपने मन को शांत से शांत बना सकते हैं।
0: क्या बात है, द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ आज का टॉपिक। एक्सपर्ट हैं अर्जुन गौड़, वेलनेस एक्सपर्ट हैं आप, और आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं 9868107070 पर, हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसी के साथ आपकी कॉल्स भी हमें चाहिए। हमारे कॉल्स, हमारी जो दो लाइन हैं वो बिल्कुल अटैच्ड हैं, खुली हुई हैं, आप इन पर कॉल करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर है 0112342108, 0112342108।

0: करार आ रहा है सांसों को, क्योंकि आज हम टॉपिक लेकर आए हैं द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। अक्सर जब हम लाइफ की बात करते हैं, अपनी डे टू डे की लाइफ की बात करते हैं, तो हम अक्सर इस बात को नोटिस करते हैं कि हम रहते तो प्रेजेंट वर्तमान में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर का काम कर रहे हों, ऑफिस का काम कर रहे हों, या फिर कहीं ट्रैवल भी कर रहे हों, तो हम प्रेजेंट में रहते हुए भी या तो पास्ट में चले जाते हैं या फिर फ्यूचर के प्लान्स बनाना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट को, जो प्रेजेंट मोमेंट होता है, उसको बिल्कुल नकार देते हैं और उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जबकि जो प्रेजेंट मोमेंट होता है वो लाइफ का बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है। और आज हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि कैसे माइंडफुलनेस को प्राप्त किया जा सकता है, पाया जा सकता है डेली लाइफ में। एक मैसेज आया है, इसमें लिखा गया है कि जब वो प्रेजेंट में रहते हैं तो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, स्पेशली उन्होंने लिखा है कि जब वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो वो एक्सरसाइज करते हुए, मेडिटेशन करते हुए या तो पास्ट में चले जाते हैं या फिर फ्यूचर में चले जाते हैं, प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं, और इस तरीके से उनकी जो मेडिटेशन की क्वालिटी है बहुत लो रहती है। तो किस तरीके से ब्रीथ को कंट्रोल करके वो इसको हाई क्वालिटी का बना सकते हैं?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को सबसे पहले बहुत ज़रूरी है समझना मेडिटेशन प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि मेडिटेशन माइंडफुलनेस का एक पार्ट है। तो जब किसी ने मेडिटेशन फर्स्ट टाइम नहीं किया और कोई बिगनर है या कोई पहली बार मेडिटेशन कर रहा है, तो मैं हमेशा आपके लिसनर को आज ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपका मेडिटेशन शुरू करने का कुछ प्लान है तो उससे पहले कम से कम 14 डेज अपनी बॉडी को ब्रेथ वर्क की हैबिट में डालें। 14 डेज ब्रीदिंग करने के बाद ही आपकी थॉट स्टेबल होने लायक होगी, जो कि आपके मेडिटेशन में हेल्पफुल होगी। आप डायरेक्ट अगर मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपकी थॉट, जाहिर सी बात है, फ्यूचर एंड पास्ट की जाने की फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होगी, क्योंकि आपने अभी ब्रेथ पे ही कंट्रोल लेना शुरू नहीं किया है। तो जब तक ब्रेथ पे ही कंट्रोल लेना शुरू नहीं कर पाएंगे, तब तक माइंडफुलनेस में, मेडिटेशन पे, नेक्स्ट प्रोसेस में माइंड भी आपका प्रोसेस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले 14 डेज, एट इज मिनिमम 14 दिन ब्रीदिंग को दे, ब्रेथ वर्क करें, बेसिक ब्रेथ वर्क करें, उसके बाद मेडिटेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करें, क्योंकि वो ब्रीदिंग से आप अपनी अवेयरनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जब आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे हैं 14 डेज, तो ऑटोमेटिकली आप अपने फोकस को, अपनी स्टेबिलिटी को और अपनी अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद माइंडफुलनेस में जब आप मेडिटेशन में जाएंगे तो मेडिटेशन में वो फ्रिक्वेंसी एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शन की थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी।
0: जी बिल्कुल, और क्वालिटी हाई हो जाएगी
1: 100%।
0: जी बिल्कुल। पटना से रीता का फोन

0: से जाया है, वो लिखती है कि ब्रेथ वर्क करते हुए, सांस की टेक्निक्स पर काम करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: ब्रेथ वर्क करते हुए सबसे पहले ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि हम एम्प्टी स्टमक हो, हमने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े लूज होने चाहिए जब हम ब्रेथ वर्क कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव पोजीशन में बॉडी को नहीं रखना चाहिए उस टाइम पे। अपने आप को सारी थॉट्स के साथ ब्रेथ वर्क शुरू करने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करिए, अपने आप को हर चीज़ से डिस्कनेक्ट करिए, ठीक है, और प्रेजेंट में आइए। अब ब्रेथ वर्क जब आपको करना है तो ब्रेथ वर्क के वक्त फोकस करिए सबसे पहले कि आपका एक टास्क नहीं है, इसको फील करना है, इसको महसूस करना है। आपको अपने आप को महसूस करना है, उस समय को महसूस करना है, क्योंकि जब एक इंसान एक थेरेपी, ब्रेथ वर्क हो, मेडिटेशन हो, अगर टास्क की तरह करना शुरू कर देता है ना, तो वो एक ऑफिस टास्क की तरह बन जाता है, उसको वो इंजॉय नहीं कर सकता है। जिस तरीके से जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हम डेस्टिनेशन में पहुँचने की बजाय हम जो रास्ता होता है ना उसको इंजॉय करते हैं ना, तो वो ट्रैवल कंप्लीट इंजॉय कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसको टास्क की तरह ना लेके उसको फील करें, महसूस करें, और जिस तरीके से हो रहा है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को फील कर पा रहे हैं ना उस प्रेजेंट में, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है। रॉकेट साइंस नहीं है, ब्रेथ हमारी है, सांसें हमारी है, ज़िंदगी हमारी है।
0: जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है अमित का, वो कहते हैं कि वो बैंक में जॉब करते हैं और काम जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, दबाव रहता है काम का, ऐसे में ब्रीथिंग टेक्निक्स को अपनाकर कैसे ऑफिस में अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है, जिससे कि जो दूसरे लोगों की नेगेटिविटी होती है वो अगर हमारे पास आ भी रही है तो वो हमें कुछ इफेक्ट ना करे, बल्कि हम अपना काम अच्छे तरीके से करते चले जाएं।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और वैसे भी बैंक में काम करना मतलब और ज़्यादा स्ट्रेस, ऑब्वियसली स्ट्रेस वैसे हर काम में हो जाता है, लेकिन काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, और ऐसे में उनको सबसे इंपॉर्टेंट है जब वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी ब्रीदिंग में टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं अपनी, या कोई बेसिक टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी एनर्जीज को, आप पूरे दिन लोगों से कनेक्टेड हैं, आप पब्लिक डीलिंग के अंदर हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी एनर्जी को भी चैनलाइज करना उतना ही जरूरी है जितना उस बैंक में मनी करेंसी को चैनलाइज करना है, राइट? तो रात में आके, शाम को आके, घर आके या अर्ली मॉर्निंग में अपनी ब्रीदिंग को और एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने प्रेजेंट में आना उस टाइम पे। आपके जो भी प्रोफाइल है, जो भी डेजिग्नेशन है, जो भी चैलेंज और स्ट्रेस है, उन सभी से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और आपकी एनर्जी आपकी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, लेकिन जब आप ब्रीदिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को पावरफुल बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हिट नहीं करती है, एटलीस्ट आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर लेती है दैट मोमेंट।
0: जी बिल्कुल। ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन बोरिंग लगता है तो इसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, गोलू का मैसेज है पटना से।
1: वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और ये जाहिर सी बात है ये बहुत कॉमन एक चैलेंज हो चुका है, क्योंकि आज के डेट में देखिए लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हम लोग एडवांसमेंट में जी रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर जी रहे हैं, AI की लाइफ में जी रहे हैं, और यहाँ पे पेशेंस की कमी बहुत हो गई है आज के डेट में। तो ब्रीदिंग और मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इवन कम्प्लीटली मैं बोलूँगा, ये कैसा प्रोसेस है जो पेशेंस डिमांड करता है आपसे, सब्र।
0: बिल्कुल
1: सब्र। तो जब आपके पास सब्र होगा तब आप इस पूरे मेथड को एंजॉय कर सकते हैं। और बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि आजकल पेशेंस कम हो गए हैं, आजकल हर चीज़ बहुत जल्दी फास्ट तेजी से हमें चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें अच्छी हैं, फास्ट होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी ब्रेथ हमारी है
0: जी,
1: हमारी लाइफ हमारी है, इसमें थोड़ा सा स्लो रहना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को फील कर सकें
0: जी। प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट। इसी के साथ इम्तियाज़ मोहम्मद का न्यू दिल्ली से मैसेज आया है, उनका जो मैसेज मुझे लग रहा है वो कुछ इस तरीके से कहना चाहते हैं कि कई बार उन्हें लगता है कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, और वो जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा फील हो रहा हो और हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाए तो उस बीच में क्या करना चाहिए, ब्रीथ को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, किस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए उस टाइम पे।
1: देखिए वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल कंडीशंस, कोई हिस्ट्री तो नहीं है आपकी या आपका कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन जो हो सकता है, डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड है, बट स्टिल मैं यही बोलूँगा एज अ लेमैन कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन लगती है या एकदम लगता है आपको ऑक्सीजन नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप सबसे पहले नंगे पाँव ऑब्वियसली ज़मीन पे खड़े रहें और अपने काफ्स को थोड़ा सा पंजों पे मूवमेंट करें, क्योंकि काफ्स मूवमेंट पंजों से जब आप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे आपके हार्ट बीट पे और अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा और आप टेक्निकली बेटर फील करना शुरू

0: करेंगे. आई एम नॉट श्योर आपकी मेडिकल कंडीशन उस टाइम पे कैसी है और वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, लेकिन बींग ए लेमैन अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है तो आप इमीडिएटली एटलीस्ट अपने आप को जमीन से जोड़िए और काफ्स मूवमेंट करिए.
1: जी बिल्कुल. एक और मैसेज आया, वो कहते हैं कि कुछ और टेक्निक्स बताइए ब्रेथ वर्क की जिससे कि घर में आसानी से उन्हें किया जा सके.
0: घर में आसानी से ब्रेथ वर्क करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें, बॉडी को नॉर्मल रखें. नोज से इनहेल, नोज से एक्सहेल, जैसा मैंने बोला 20 टाइम्स के 2-3 राउंड्स, जैसे आपकी कैपेसिटी है, बॉडी का स्टेमिना है, उस बेस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद सेकंड राउंड आप है, अगर आपकी एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल फील कर रही है, आप माउथ से इनहेल माउथ से एक्सहेल भी कर सकते हैं, और वो भी आप उसके 2 राउंड्स कर सकते हैं स्लोली स्लोली. डीप इनहेल फ्रॉम माउथ एंड डीप एक्सहेल फ्रॉम माउथ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर कंप्लीट लंग्स, योर हार्ट एंड एवरीथिंग. सो इसमें आप और पावरफुल और चार्ज फील करते हैं, एंटायर डे विल बी कंप्लीट प्रोडक्टिव.
1: ओके, दैट्स वंडरफुल. और अब वक्त कह रहा है कि चलना होगा, तो चलते चलते आप लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही लिसनर्स को कहना चाहूँगा, सबसे पहले आज ये शो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, और मेरा एक ही मैसेज है कि ज़िंदगी बहुत सुंदर है, इसको हमें अपनी सांसों के साथ जीना है. सांसों के साथ जब हम ज़िंदगी को जिएंगे तो हम इसे महसूस कर पाएंगे. लाइफ को महसूस करिए, एक ही ज़िंदगी मिलती है, खूबसूरत है, सांसें भी बहुत खूबसूरत हैं. तो स्ट्रेस को साइड रख के सांस हमारी अपनी है, महसूस करिए.
1: जी बिल्कुल, सांस खूबसूरत है, सांस पावरफुल है, और आप इन्हें सही तरीके से लेकर, सांसों को कंट्रोल करते हुए सही तरीके से लेकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. आज हेल्पलाइन प्रोग्राम में हम टॉपिक लेकर आए थे द हिडन पावर ऑफ ब्रेथवर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ. हमारे साथ एक्सपर्ट रहे अर्जुन गौर, वेलनेस एक्सपर्ट आप रहे, और इसी के साथ मैं प्रियंका मामगेन लेती हूँ विदा. अगला प्रोग्राम आशियाना आपके साथ रहेंगे स्वाति गुप्ता.

0: आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। आज का दिन कुछ अलग सा ही है ना, धूप छांव का खेल जो है सुबह से हम लोगों ने देखा है और बिल्कुल इसी तरह का धूप छांव का खेल हम लोग अपनी जिंदगी में भी अक्सर जो है वो देखते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स में भी जो है ना, कभी कभी सनी डेज होते हैं, चमकीले दिन होते हैं, तो कभी कभी जो है ना बारिश की ठंडक भी होती है लेकिन घिरे हुए बादल भी होते हैं। तो इसी तरह से बदलते हुए मौसम और बदलते हुए रिश्ते जिंदगी का एक हिस्सा है। और आज इसी तरह के बदलते हुए मौसम के दिन सोचा कि कुछ इसी के ऊपर बात की जाए, द चेंजिंग सीजन्स ऑफ मैरिड लाइफ, इसी के ऊपर बात करेंगे हम आज। हमारे आज के इस प्रोग्राम में नाम है इसका हम कदम, सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूँ स्वाति आप सभी के साथ। ये एक घंटा हम और आप मिलकर चलते हैं कदम से कदम मिलाकर।

और बात करते हैं उस सफ़र की जो आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट सफ़र होता है, आपके सबसे करीबी हम सफ़र के साथ जी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में हम करते हैं बात हमारे इस प्रोग्राम में। और भाई शादी का लड्डू जो है ना, ये वाली कहावत तो फेमस है कि जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, लेकिन असलियत ये है कि ये लड्डू हर महीने हर साल अपना स्वाद बदलता रहता है। जिन्होंने खाया है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जो खाने की सोच रहे हैं उन्हें भी जो है ना ये सब चीज़ें एंटिसिपेट करके चलना ही चाहिए। जैसे मौसम होता है ना, मैंने बताया था आपको कि किस तरह से धूप और छांव का खेल जो है सुबह से चल रहा है। कभी कभी रिमझिम बारिश होती है, कभी कड़कती धूप होती है। तो इसी तरह से अगर हम शादीशुदा ज़िंदगी के सीजन्स की बात करें ना, मौसमों की बात करें, तो उसमें भी देखा जाए तो एक तरह से चार खूबसूरत और खट्टे मीठे मौसमों में आप ना इसको डिवाइड कर सकते हैं। और वही चार मौसम जो है ना आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम इसका हम कदम सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए मधुर और एआर रहमान की आवाज में बहुत ही अमेजिंग सा गाना फ्रॉम द मूवी युवा। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

आई विल ऑलवेज लव यू ऑल माई लाइफ, कितनी खूबसूरत सी बात है ना. कोई कहता है जवाब के लिए तो कितनी खुशी होती है दिल को, कितना सुकून आता है. एनीवे हम बात कर रहे हैं शादीशुदा जिंदगी के मौसमों के बारे में, और शुरुआत तो जी बाहर के मौसम से ही करनी पड़ेगी ना. और यही तो होता है वो हनीमून पीरियड, जब इसी तरह के गाने जो है ना वो आपको पसंद आते हैं और इसी तरह की बातें जो है वो आप करना पसंद करते हैं. कहते ना तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए. तो सपने देखने का, फैंटेसी का जो दौर होता है ना, वो ही तो होता है इस खूबसूरत से सफ़र का पहला मौसम, वो पहली राह, वो पहला सफ़र जो आप शुरू करते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है इसकी. एक बार फिर से याद दिला दूँ, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है हम कदम, मैं हूँ स्वाति आप सभी के साथ. तो जी रोमांस के ओवरडोज के बाहर का जो ये मौसम होता है, इसमें हम लोगों को जो है ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट है हमारे लिए. हर चीज़ खूबसूरत होती है, हर चीज़ जो है ना एक कहना चाहिए कि एक गुलाबी चश्मे से जो है वो हम देखना चाहते हैं. वैसे देखा जाए तो ऐसे टाइम में ना जो हमारी कमियां भी होती हैं ना, वो भी हमारे पार्टनर को बड़ी अच्छी लगती हैं. मतलब कितना खूबसूरत पीरियड होता है ये. बट एनीवेज ये वो समय होता है जब रोज़ाना जो है ना शाम को जब आप घर लौटते हैं तो आपको यो एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करना जो है वो याद रहता है. इस खूबसूरत से मौसम से होती है शुरुआत इस बहुत ही शानदार सफ़र की. एंड वेल खूबसूरत शुरुआत तो होनी ही चाहिए, ये सफ़र ही आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट सफ़र होता है. बात कर रहे हैं हम बदलते हुए सीज़न के बारे में, और दिन भर में जहां बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं वहां पे ये रिलेशनशिप भी हर दिन नए नए कहना चाहिए कि चेंजेस से गुजरता है. और हर पल जो बीतता है ना वो इस सफर में और ज्यादा चीजें जोड़ता हुआ चला जाता है, इसे बदलता हुआ चला जाता है. पता ही नहीं चलता कब इतना वक्त बीत जाता है और कब इतने चेंजेस आ जाते हैं कि आप नोटिस करना भी छोड़ देते हैं. लेकिन फिलहाल मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग सा गाना. और हमारे इस गुलाबी सफर की से जो ये शुरुआत होती है ना, ये जो हनीमून पीरियड होता है, उसी के नाम में अगला गाना कर रही हूँ. आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है हम कदम, बात हो रही है शादी के बदलते हुए सीजन्स के बारे में.

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
3: म्यूजिकली योर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ प्रोग्राम हम कदम लेके। और हम कदम में जब मैंने कहा कि आज हम बदलते हुए सीजन्स के बारे में बात करेंगे तो आपके इस बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के बदलते हुए जो फेजेस होते हैं ना उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई पहला फेज तो मैंने आपको बता दिया गुलाबी चश्मे वाला और जिसे हम सबसे बेहतरीन फेज मानते हैं हमारे रिलेशनशिप का वो। लेकिन उसके बाद टाइम आ जाता है जी रियलिटी चेक का। सपनों से बाहर निकल के आना पड़ता है, यथार्थ के धरातल पे उतरना ही पड़ता है। इसी को कहते हैं रियलिटी चेक फेज। जब कड़कती धूप और उमस का मौसम जिसको हम कहते हैं ना वो आने लगता है। वैसे तो ये जो हनीमून फेज होता है कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का होता है, कुछ महीनों का होता है।

लेकिन अगर लंबा चले तो 2 से 5 साल तक जो है ना ये चल जाता है, लेकिन इतना वक्त बीतते बीतते इस फेज के गुजरते गुजरते ये बाहर का मौसम जो है ना पैकअप कर लेता है। इसकी भी ना ड्यूरेशन शॉर्ट लिफ्ट हो गई है, बिल्कुल हमारे असली बसंत के मौसम की तरह से। लेकिन एनीवेज अब एंट्री हो रही है जी तपती दोपहरी जैसी हकीकत की। और अब होता क्या है ना कि जो प्यार वाले नाम आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो शोना बाबू वाले जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और सीधे सीधे जो है ना आप एक दूसरे को जो है दूसरे नामों से एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। ये वाले नाम जो है साइड में रख देते हैं, कब आपकी ज़ुबान से उतर जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। छोटे छोटे मुद्दों पर जो है लड़ाई झगड़ा होने लगता है, और लड़ाई झगड़ा भी नहीं, इनफैक्ट बहस जिसको हम कह सकते हैं। भाई गीला तौलिया बिस्तर पर रख दिया, टूथपेस्ट बीच में से क्यों दबाए, तो बहुत ही कॉमन से मुद्दे हैं और लगभग हर घर में जो है वो होते हैं। संडे का दिन किस तरह से बताया जाएगा इस बात पर भी जो है बहस हो जाती है। क्या ना फिल्टर्स हट जाते हैं सारे के सारे, अब आप जो है एक दूसरे को केवल अपना बेस्ट नहीं बल्कि अपना रियलिटी जो है ना वो भी जब आप एक दूसरे का देखना शुरू करते हैं और देना शुरू करते हैं, तो अक्सर यही वो फेज होता है जब आम शिकायत सबसे ज्यादा ये होती है कि पहले मेरी यही बात तो थी जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद थी। वैसे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शादी का जो तीसरा साल होता है ना उसी समय में सबसे ज्यादा ये जो छोटे मोटे झगड़े हैं ना वो होते हैं, और उसकी वजह पता है क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि आप अपने रिलेशनशिप को इतना टाइम दे चुके होते हैं, इतना एफर्ट उसमें डाल चुके होते हैं कि उसके बाद आपको अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी, अपने खुद की स्पेस जो है ना उसकी याद आने लग जाती है, और इसीलिए उसी को वापस पाने की कोशिश में ये सब छोटी छोटी बातें जो है ना वो होती हैं। और इस तपती दोपहरी में बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एक छाते का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये धूप जो है ना आपके रिलेशनशिप को जला सकती है, और वो छाता जो है वो है आपकी आपसी समझ का, प्यार का, उस भरोसे का जो कि अब तक आके आपने बनाया होता है। और उसी के नाम कर रही हूँ मैं अपना अगला गाना, इसी फेज के नाम में मैं बहुत ही एक खूबसूरत सा गाना है फ्रॉम द मूवी जख्म जो मैं प्ले करने जा रही हूँ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। प्रोग्राम हम कदम सुन रहे हैं आप मेरे साथ, और अगली आवाज़ अलका याग्निक की।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
2: आकाशवाणी रेनबो
3: म्यूजिकली यॉर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं। प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। और आज हम कर रहे हैं बदलते हुए मौसमों के बारे में बात। जी, शादीशुदा जिंदगी के दो मौसम अब तक हमने कवर किए और उसमें से एक तो था ख्वाबों का मौसम और जिसको हम बाहर का मौसम कह सकते हैं। उसके बाद गर्मी का मौसम,

चुके होते हैं। ये वो फेज है जिसमें आपकी फैमिली बढ़ती है, आपकी जिंदगी में बच्चों की एंट्री होती है और तकरीबन शादी के 5 से 15 साल के बीच का जो फेज होता है ना, उसको आप चाहे तो इसमें गिन सकते हैं। इस फेज में जिंदगी में छोटे छोटे आपके मेहमान भी आ चुके हैं, रोमांस की जगह जो है वो मैनेजमेंट ने ले चुकी है, क्योंकि अब आप पार्टनर्स हैं, अब आप कलीग्स हैं जी, एक कपल से बढ़कर, क्योंकि आप अपना घर परिवार प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, उसको बहुत अच्छी तरह से और बहुत स्मूथली आप उसको चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अब आप एक तरह से दो मैनेजर्स की तरह से हो जाते हैं, क्योंकि घर का सामान आ गया है, स्कूल की फीस भर दी गई है, वैक्सीनेशन करवाया नहीं करवाया, जिंदगी की ये सारी चीजों की मैनेजमेंट, इन सभी चीजों को कायदे से रखना, करीने से चलाना, टाइम टेबल बनाना, स्केड्यूल्स बनाना, ये सब चीजें जो है जिंदगी में शामिल हो चुकी हैं। अब इस मौसम में रोमांस का मतलब कैंडल लाइट डिनर नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसे में इस फेज में क्या होता है ना कि अगर हस्बैंड जो है थोड़ी देर के लिए बच्चों को खिलाने की, सुलाने की या पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ले और संडे को पत्नी जो है पति को देर तक सोने दें, तो एक तरह से ना उसी को रोमांस मान लिया जाता है। परिभाषाएं बदल जाती हैं, अब बातें कही नहीं जाती हैं, केवल समझी जाती हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस समय में एक दूसरे के लिए छोड़िए अपने लिए भी वक्त जो है ना वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में ना इस पतझड़ के मौसम को निभा रहे होते हैं और ये सभी चीज़ें जो है ना जिंदगी का हिस्सा है, ये वो रियलिटीज़ हैं जिनसे हम सभी दो चार होते हैं। प्रोग्राम हम कदम, इसमें हम बात कर रहे हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी के सफ़र की और उस सफ़र में आने वाले सभी मौसमों की। तीसरा मौसम अभी हमने किया पार, चौथे का कीजिए इंतज़ार। मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा गाना, के की आवाज़ में, मुझे बेहद पसंद है और ख़ासतौर पर इस गाने के जो लिरिक्स हैं ना मुझे बेहद बेहद खूबसूरत लगते हैं। आप भी सुनिए और मुझे बताइए कि क्या वाकई में आपको भी ये गाना उतना ही पसंद आता है जितना कि मुझे। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। और हाँ, जहां तक पसंद की बात है ना, सबकी अपनी अपनी होती है और सबको अपनी अपनी पसंद का अधिकार भी होता है। बस इतनी सी तो बात है ना जो हमें समझनी होती है एक दूसरे के लिए। फिलहाल आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। अनकही मूवी से अभी आपने सुना एक बहुत ही अमेजिंग सा गाना केके की आवाज में। मैं हूं स्वाति, आप सभी के साथ बात कर रहे हैं हम आज हमारे इस हम कदम प्रोग्राम में शादी के बदलते हुए सीजन्स के ऊपर। शुरुआत हुई थी इश्क से पहुंची बात इंडिविजुअलिटी पे, उसके बाद बात आ गई एक दूसरे कि इनफैक्ट अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह से एक फैमिली में कन्वर्ट कर देना, उसमें खो देने पे। और अब हम पहुंचे हैं आकर उस चौथे मौसम पे जिसे हम गुलाबी ठंड का मौसम कह सकते हैं, द गोल्डन एंड द मैच्योर फेस। जी हाँ, सुनहरी बालों का और मेंटल मैच्योरिटी का जो एक सीजन होता है ना, ये वो सीजन है जब एक बार फिर से घर में जो है ना वही दो लोग बचते हैं जिन्होंने इस सफर की शुरुआत की थी। जब आपकी शादी को करीब 20 से 25 साल हो चुके होते हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपने करियर में जो है व्यस्त हो चुके हैं, अपनी पढ़ाई में बिजी हो चुके हैं, तब ये जो फेज आता है जिंदगी का, इसमें क्या है ना, ये बात शुरुआत में होती है कि भाई आज चाय कौन बनाएगा से शुरू होता है, और पहुंचते पहुंचते बात इस चौथे मौसम में इस बात पर आ जाती है कि अच्छा चाय पीनी है, ठहरो मैं बनाता हूँ या मैं बनाती हूँ। जी हाँ, इस बात पर आ जाती है जब आप अपनी कमियों पे और अच्छाइयों पे बहस करना छोड़ चुके हैं बल्कि उन्हें पूरी तरह से अपना चुके हैं। इसीलिए लड़ने के लिए ना तो आपके पास कोई मुद्दा बचता है और देखा जाए तो कोई एनर्जी भी नहीं बचती है, क्योंकि आप एक दूसरे को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं और पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में जब छोटी से छोटी बात होती है ना, वो बिना कहे आप समझने लग जाते हैं, एक दूसरे के सेंटेंसेस को पूरा करने लग जाते हैं, और आपको ये भी पता होता है कि किस बात पे आपके हमसफर का कैसा रिएक्शन आएगा। तो यही वो फेज होता है जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी होती है, ट्रस्ट जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका है, बालों में सफेदी आ चुकी है और वजन थोड़े थोड़े बढ़ चुके हैं, और एक दूसरे के साथ में अब बात पहुंच चुकी है दोस्ती पर। जी, उसी दोस्ती पर हम पहुंच जाते हैं अंत में, जहां पर ज्यादा कुछ कहने की भी जरूरत जो है ना वो नहीं पड़ती है। शादी के बदलते हुए

सीजन्स में ये चौथा सीजन जो है अक्सर हम इसको गोल्डन पीरियड कहते हैं, और वाकई में ये पीरियड आते आते जो होता है ना, ये समय आते आते आप एक बहुत बड़ा सफ़र जो है वो तय कर चुके हैं अपने उस हम सफ़र के साथ जिसका जिक्र करते हैं हम हमारे इस प्रोग्राम में। नाम है इसका हम कदम सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे, और ऐसी ही सक्सेसफुल कहानियों के नाम पर ऐसी ही सक्सेसफुल जर्नीस को डेडिकेट कर रही हूं मैं अपना अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी गब्बर इज़ बैक मैं प्ले करने जा रही हूं आप सभी के लिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। अरिजीत सिंह और पलक मुचल की आवाज में अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी गब्बर इज बैक, बहुत ही अमेजिंग सा गाना। और कहानी जो है ना, कहानी और सफर दोनों जो है यहीं पर बस खत्म होना चाहते हैं, क्योंकि समय जो है ना प्रोग्राम का वो बहुत ही थोड़ा सा बचा है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बदलते हुए मौसम होते हैं, लेकिन शादी का कोई भी मौसम जो है ना, किसी भी रिश्ते का इनफैक्ट कहना चाहिए कि कोई भी मौसम जो है वो परमानेंट नहीं होता है। अगर आज धूप है तो कल बारिश भी होगी और फिर सुहानी ठंड भी आती ही है। इस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उनमें कुछ चीज़ें जो शामिल है वो है ऑब्वियसली बहुत सारा पेशेंस जो है वो रखना ज़रूरी होता है, और इसके साथ साथ चीज़ों को ना एक लाइट हार्टेड अंदाज में देखने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग जाएं तो फिर हर चीज़ एक बोझ सी बन जाती है ना। और हाँ, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहना और अपनी ज़िंदगी में उसके होने की कहना चाहिए कि उसका शुक्र मनाते रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल प्रोग्राम जो है हमारा ख़त्म होने को है, तो सफ़र की मौसमों की बात बस यहीं तक। चलते चलते आपको बता दूं कि अगला प्रोग्राम जो है वो कौन सा सुनने वाले हैं आप 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। अगला प्रोग्राम जो है वो आपकी स्वास्थ्य से जुड़ा है, तो आपके स्वास्थ्य की से जुड़ी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करता है हमारा प्रोग्राम, नाम है इसका रेडियो डॉक्टर। इसे आप सुनेंगे 3 से 4 बजे के बीच में सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। आज का टॉपिक है कि समर्स में यानी कि गर्मियों में आप अपनी स्किन की केयर कैसे करें, और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में जो एक्सपर्ट होंगी वो हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल से। इस प्रोग्राम में आप जरूर सुनिए कि गर्मियों में आप अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। फिलहाल आज का हम कदम था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

आप अपने दुकान को संभाल रहे हो या ऑफिस पर हो या घर पे हो या कहीं पे भी हो, आपको तो पता है एफएम ट्रकोबैन कहीं पे भी आपके साथ हो सकता है। सो यस माय डियर लव दोस्तों, ट्रांसमिशन कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे मैं ला रही हूँ पहला गाना। दिस इज कैन वी टॉक अबाउट आइजक।

0: লোৱা আগে সদায় ভাল পৰা তোলাবলৈ ইয়াত কৰিবি। ফুড চেফটি অথৰিটি, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড পৰা পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট নিমিত্তে ইছ্যু কৰি দি আছে।
1: FM Dragoban 103 MHz पर आप सुन रहे हैं वेस्टर्न म्यूजिक आर्स विथ मी आरजे वेरोनिका। अभी जो ट्रैक हमने सुना वो था कैन वी टॉक अबाउट आइजैक। वेल यू नो समटाइम्स सॉन्ग्स रियली फील लाइक अ रैंडम कन्वर्सेशन फ्रॉम लाइफ इट्सेल्फ, राइट? कभी किसी का नाम, कभी यू नो किसी का मेमोरी, ये बस एक फेस और सडनली हमें याद आने लगते हैं वो इंसान या वो लोग जो हमें बहुत दिनों से याद भी नहीं था, अचानक से वो हमारे दिमाग में आ जाता है। एंड यू नो व्हेन वी लिसन टू सम काइंड ऑफ म्यूज़िक उन्हें रिलेट कर पाते हैं हम, है ना? लाइक म्यूज़िक डज दैट क्वाइटली विदाउट वार्निंग, लाइक इट ओपन्स ऑल द विंडोज इन द माइंड। और आई थिंक इट्स टाइम दैट वी रिलैक्स अ लिटिल बिट नाउ और अब मूड को थोड़ा और ड्रीमी और इमोशनल जोन में ले चलते हैं विद अ ट्रैक दैट फील्स लाइक लेट नाइट थॉट्स इन द मिडल ऑफ द आफ्टरनून। हियर्स अ लूज माय माइंड बाय टोलू। स्टे विथ मी आरजे वेरोनिका नकाश वानी, एफएम ट्रैक बैंड।

0: HIV le AIDS Prevention and Control Act sangni somle sagi hi HIV nat kila kai ho chil akitong kho ven bit na pitia ki kong do hi
1: hichi dan hin na to namun hi hen hoilai mun hi jong le HIV ve ho tum bol na le thet bol na ado dalin a hi
0: nat ni khat mel chi jing kiu na su zum oi mo ki ti bo akun ki dal se utin sam dilai hin ku pui khom di som gel chi di
1: hichi he sa na hi Nagaland State AIDS Control Society and Sex akun ki mu a hi Welcome back, dosto. After that short break, we were talking about responsibilities and, you know, the feelings that we have sometimes as a human being. And, you know, before I give you the next track, a quick reminder that at 3:30, I bring you your traffic update. Aur isi bahane mein ek kuch baatein share karna chahungi kyunki main Kohima mein rehti hoon, right? Aur ye station to Kohima mein hi hai, lekin अगर आप असम में रहते हो या गोवा में रहते हो या गुजरात में या कहीं पे भी आप लोगों के वहाँ तो सीढ़ियाँ नहीं होंगे मतलब स्टेयर्स राइट यहाँ पे कोहिमा में तो हमें बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ते हैं हर रोज़ उतर चढ़ाव है ना एवरी मॉर्निंग वी हैव टू क्लाइम अप एंड वी हैव टू क्लाइम डाउन यू नो ये चलता ही रहता है 6-7 बार कभी तो और कभी तो 2-3 बार तो आप सोच सकते हैं कि कोहिमा में कितना कितना लंबा लंबा स्टेप्स होंगे और वैसे भी मैं आज सुबह निकल रही थी कुछ काम के लिए बाज़ार को और बस सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं थक चुकी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे थोड़ा आराम कर लूँ थोड़ा अपना ब्रेथ कैच कर लूँ और उसके बाद मैं चलती हूँ बोल के मैं ऐसे ही खड़ा थी तो मैंने सुना बगल में एक घर था वहाँ पे से एक गाना निकल रहा था ओके एक गाना बजा रहे थे वो लोग और जब मैंने वो गाना सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा जब भी वो बजा रहे थे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा तो तभी मुझे याद आया अरे आज तो मेरा ड्यूटी है आज शाम को तो मेरा ड्यूटी है और क्यों ना मैं ड्यूटी जाकर अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये गाना बिल्कुल ज़रूर भज्जा के अपने लिसनर्स को सुनाऊंगी तो ये रहा ये है द फेट ऑफ ओफेलिया बाय टेलर स्विफ्ट और मुझे आज सुनकर बहुत अच्छा लगा तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा तो लेट्स गो एंड लिसन टू इट

वेलकम बैक दोस्तों. यस, यू आर ट्यून इन टू एफ एम ट्रागोपान 110 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी कोहिमा. एंड यस, आई एम योर आरजे वेरोनिका कीपिंग योर आफ्टरनून कंपेनियन. एंड यस, आफ्टर दैट क्विक ट्रैफिक अपडेट यू आर लिसनिंग टू रैकलेस बाय मैडिसन बेयर. एंड यस, समटाइम्स यू नो म्यूजिक बहुत कुछ कह जाता है ना. वेल, इफ यू आर आउट देयर एंड स्टेइंग इन दैट इमोशनल लैंड, नेक्स्ट अप इज अ track that reminds us how strong happiness can feel after losing someone or, you know, something close to the heart. Here comes Happier by Marshmello.

such an honor song that was, right? Stop this train. हमें याद दिलाता है ये गाना कि यू नो लाइफ कीप्स मूविंग ऑन वेदर वी आर रेडी और नॉट. कि जैसे लाइफ एक जिंदगी में लाइक हमारे जो जिंदगी है ना वो बिल्कुल एक ट्रेन की तरह ही है. अगर आप सोचे तो है ना, कोई किसी स्टेशन पर उतर जाता है तो कोई चढ़ जाता है, तो कोई अपना ट्रेन मिस भी कर जाता है ना. तो हर दिन हम थोड़ा और बढ़ते हैं, थोड़ा और सीखते हैं, और शायद इसीलिए द वर्ल्ड नीड्स अ लिटल मोर काइंडनेस, अ लिटल मोर पेशेंस एंड यस अ लिटल मोर लव. सो कमिंग अप नेक्स्ट इज अ सॉन्ग एंड इट्स कॉल्ड अ लिटल लव बाय बिफी क्लैरो राइट हियर ऑन एफएम ट्रैगोपन विद आरजे वेरोनिका. बट या बिफोर आई प्ले दैट सॉन्ग, हमारे प्यारे सपत स्विंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप जुड़ चुके हैं हमारे साथ. रेडियो लिसनर्स ग्रुप फ्रॉम सपत स्विंगी जी, वी आर सो ग्लैड आप लोग जुड़ चुके हैं. गुड इवनिंग आरजे, नमस्कार. दुर्गेश नागिनपुरे, राधे श्याम नागिनपुरे, वंदना भावना बिल्डू, गोलू कुसुम्बाय बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार दक्षे. दुर्गेश जी, आपको और आपके इस

प्यारे से परिवार को भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम में। और यस अभिजीत, आपको कौन से टाइप का म्यूजिक पसंद है? मुझे तो पेरेंट्स लव, रिलेट टू गॉड, रिलैक्स एंड मेनी मोर सॉन्ग्स एक्सेट्रा लिखे से। वल्ला अभिजीत, आई थिंक मुझे ने किए सुनागी। आई लव टू लिसन टू एनी यू नो सॉफ्ट रॉक भी होने पड़े, पॉप भी होने पड़े मुझे। आई कैन लिसन टू हिंदी, आई कैन लिसन टू यू नो रोमांटिक सॉन्ग्स, आई कैन लिसन टू सो मेनी सॉन्ग्स, बट इट डिपेंड्स मेरे मूड के ऊपर। एनी वेज, वी हैव सूरज वर्मा, ऋषभ खनक और भावना वर्मा, प्रेमलाल वर्मा, निकेश हर्षिता और ममता भाई वर्मा हमारे इस शाम को रंगीन बनाने के लिए वो सभी जुड़ चुके हैं। तो स्वागत है आप सभी का भी। एंड यस, जैसे मैंने बताया, कमिंग अप योर वे अ लिटिल लव बाय बिफी क्लायरो।

अलराइट दोस्तों, यहाँ पे दुर्गेश नागेंद्रपुरे जी का बहुत ही प्यारा सा एक शायरी आ चुका है। वक्त की यारी तो हर कोई करता है, मेरे दोस्त मज़ा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर यार ना बदले। आपके पसंदीदा गाने लगातार FM ट्रैक बैन 103 MHz पर, दुर्गेश नागेंद्रपुरे। वेल दुर्गेश जी, आपका जो लिखने का अंदाज है उसका तो मैं वाहवाही ही करते ही रह जाती हूँ, आपको तो पता ही है। और मुझे पता है आपके अभी आपके चेहरे पर एक बड़ा सा मुस्कुराहट भी है, और नहीं आया है तो प्लीज़ मेरे नाम पर एक मुस्कुराहट जल्दी से जल्दी से। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बिग स्माइल दुर्गेश जी। एंड यस, नमीदी बॉय और नमीदी गर्ल लिखते हैं, गुड इवनिंग RJB, कैसे हो आप? वेल नमीदी जी और नमीदी बॉय, आई एम डूइंग सुपर सुपर डुपर। और यस, यहाँ पे वक्त हो चला है 4 बजने को, और जल्दी से एक आखिरी गीत शायद मैं बजा पाऊँगी या दोगी।

शायद, है ना? और उसके बाद व्हेन इट कम्स टू फोर वी विल बी लिसनिंग टू न्यूज हेडलाइंस फॉलोड बाय लोकल आर्टिस्ट प्रोग्राम व्हिच विल बी डन फॉलोड बाय रूरल कनेक्ट एंड एट 4:50 वी हैव यू वावानी फॉर यू एट 17 वी हैव एट 5 PM आई मीन 17 5 बजे को बोलते हैं ठीक है एंड यस एट 5 PM वी हैव कलाइडोस्कोप प्रोग्राम एंड यस थोड़ी देर में मैं अपना ट्रैफिक अपडेट और न्यूज हेडलाइंस लेकर वापस आऊँगी लेकिन इस वादे के साथ कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी तो कहीं मत जाइएगा ओके डोंट टर्न ऑफ द रेडियो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ट्यूनिंग इन टू आकाशवाणी FM ट्रगबैन दिस इज योर लास्ट ट्रैक मे बी Stuck with you by Justin Bieber and Ariana Grande. And yes, I hope you enjoyed the music and the company with me this afternoon. And agla gana un logo ke naam jin ke saath, you know, chahe aap baat bhi na karo, lekin uske agar aap bagal mein baithe ho, to comfortable lagta hai. The kind of people who makes bad days easier just by being around. This is a sweet reminder that sometimes the best place to be is with the people we love.

0: ठीक ठाक बोले लगे इतो पर कैल्शियम फास्फोरस लगा रेशियो तो ठीक पावो मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस एकला लगा इंस्टीट्यूशन तो खोला भी और मार्केट तो किनिया का काम करे इतु जानी भी इतो पर अपनी बिशी रिटर्न पावो और अपनी अंदा लगा सप्लाई भी कंज्यूमर कान तो सस्ता पर पावो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस कान तो बिशी ओला अमेरिकन लगा देश इंडिया लगा भीतर हो बोले लगे विलेज लेवल पर नेशनल लेवल तक इतो पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर लगा इंटरेस्ट दुजन भी बचाई ना रखिबो और मिडल मैन तो कमती रखिबो कोऑपरेटिव्स लगा फंक्शनिंग तो इनकरेज कर बोले लगे और इतु तो खेती बाड़ी कर खान भी सब पार्टिसिपेट कर बोले लगे इतो पर सब मानो लाभ पाला हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग तो एक बेसि वर्सेटाइल एग्रो बिजनेस आज इतु तो आम खान के बेनिफिट्स बेसि दिए इतु तो आम खान लगा बेसि हाई क्वालिटी खा लवा चीज एक आसे पोल्ट्री फार्मिंग तो की लगा कंडिशन दे हुई भी चला बोले पारे बो। एग्जाम्पल आसे कहले पोल्ट्री फार्मिंग तो मिक्स फार्मिंग सिस्टम ते भी चला बोले पारे और इतुपा खेती बाड़ी कर खान दुख पा समय इनकाम तो दिए इतुपा एम्प्लयमेंट एवेन्यूज खान तो दिए पोल्ट्री वेस्ट तो बेसि बाल मेन्योर लगा सोर्स एक आसे जो तो आम खान खेती बाड़ी खान दे सब्जी बाड़ी हालिया चला बोले पारे बो। इतुपा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स खान लगा रॉ मेटेरियल्स लगा सोर्स एक आसे इतु खान लगा लिमिटेशंस और स्कोप्स खान तो दिखा लगा हिसाब से आम खान इतु पोल्ट्री फार्मिंग तो डांगर स्केल पर उठा बोले लगे और तार बाल हबले कारण रिसर्च खान तो करिबोले लगे किले कुले पोल्ट्री फार्मिंग पर सब्सिडरी इनकम इतु खाली नहुना न्यूट्रिटिव वैल्यू आम खान कारण दिया तो बेसि जरूरी रोल एक आसे मानु खान के इनकरेज करना ठीक एजेंसीज खान पर पोल्ट्री लगा इम्प्रूव फार्मिंग सिस्टम तो एडप्ट कर लगे और इतुपुर थ्रू टू पोल्ट्री फार्मार्स खान भी मिलना कर पारे इतुपुर दुख पा खानदान खान के बेसि मदद करी खान मानु खान के अंदा लगा न्यूट्रिटिव वैल्यू और इतु अंदा पर आम खान लगा डायटरी हेबिट्स खान दे कि बदली तो आने इतु तो शिकाबले लगे गवर्नमेंट खान पर भी अलग अलग मेजर्स खान तो लुना मानु खान के टेक्नोलॉजी नहले भी बीमार किनिका कंट्रोल करिबो और बीमार पर किना बाची ना थाकिबो इतु खान लगा जानकारी खान तो आमी खान के दिबोले लगे इतु थाकिसे इकोनॉमिक फीडिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स आजि आमी खान लगा प्रोग्राम तो याते पर सीज करिबो हुनि लवा सब मानु के खुशी जानाई दिया से आया कल नतुन कथा लैना लग कर
1: आजिकाली कार्बनेटेड बीवरेजेस खान खाटू बेसि हुई जाए से स्पेशली बच्चा खान और नौजवान खान लगा मजते इतु खाटू गाँव निमित्ते भल ना किले कहले इतु कार्बनेटेड बीवरेजेस खानते कैलोरीज बेसि थके और न्यूट्रिशन भी इकू नपाय किले कहले इतु ड्रिंक्स खानते विटामिन्स और मिनरल्स खान ना थके रिसर्च करा टाइम ते पातु इतु कार्बनेटेड बीवरेजेस खानते हाई पर्सेंट आर्टिफिशियल शुगर और फूड ग्रेड एसिड्स थके इतु बेसि खाटू ओजन बेसि हुई जाए ओबेसिटी टाइप टू डायबिटीज और दाँत बिया हुई जाए और दाँत ते इनफेक्शन खान भी हुई जाए इतु कार्बोनेटेड बीवरेजेस खान खा बदली लस्सी नारियल पानी शुगर फ्री स्मूदीज और फ्रेश फूड जूस खान खाइले भाल आसे जंतु खान खाबले भी भाल आसे और हेल्दी भी आसे इतु जानकारी दी आसे फूड सेफ्टी नागालैंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
2: Good evening, listeners. I'm Ibibini, and I bring to you a Yuva Vani program titled Unlearning Before Becoming, a short reflective talk on how learning can also mean unlearning the beliefs, habits, and expectations that no longer serve us. Through the simple and relatable reflection, let us look into the quiet but powerful process of shedding what holds us back in order to truly grow. We often grow up believing that life is all about learning. Learning more, achieving more, or becoming more. And we are often told to add skills, add knowledge, add achievements, as if growth is something we build by constantly adding. But as I've come to understand, growth is not always about adding something new. Sometimes it can be also about letting go.

Well, my dear listeners, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM ट्रैकबैंड 103 मेगाहर्ट्ज़ पर अपने दोस्त आरजे वेरोनिका के साथ एक छोटा सा सेगमेंट वेस्टर्न म्यूजिक 6 बजे तक. और यस, डोंट फॉरगेट, 6 बजे के बाद 6 बजे से 7:10 तक आपका हिंदी फिल्म सॉन्ग फोन लाइव इन प्रोग्राम है. तो तैयार रहेगा और अपना फोन डायल करने को शुरू. अभी सोच लीजिएगा कि कौन सा गीत मांगना है और कौन सा गीत सुनना है ना. वेल, समटाइम्स पीपल डोंट मिस अस व्हेन वी लीव, राइट? दे मिस अस व्हेन द साइलेंस फाइनली, यू नो, फाइनली उनको पहुंचता है कि हम छोड़ चुके हैं, हम चुप हो चुके हैं. एंड दैट्स द थिंग अबाउट इमोशंस, दे ऑलवेज कैच अप इवेंचुअली. अब जो ट्रैक आ रहा है, इट कैरीज दैट लेट नाइट loneliness perfectly. कभी कभी, you know, आंसू तब आता है जब सब लोग सो जाते हैं. रात को आप अकेले सोए होते हो और किसी की याद इतनी आने लगती है कि आप बस सीलिंग को देख के बोलते हैं, काश सब कुछ पहला जैसा ही होता, है ना. अगर आपको भी ऐसा फीलिंग कभी हुआ है, तो द नेक्स्ट ट्रैक इज रियली परफेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस.

0: हेलो
1: हेलो
0: सर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: पूरन, रमेश प्रजापति।
1: हाँ रमेश प्रजापति जी, मैंने सोचा जी, रमेश ओके हमने पूछा सोचा पूरन पूरन का नाम जैसा आवाज जैसा लगा।
0: पूरन पूरन जी का है ना।
1: आप कौन से जगह से था?
0: मैं ग्राम बाया तहसील रहती जिला सीहोर एमपी से हूँ सर।
1: एमपी
0: जी,
1: मध्य प्रदेश।
0: पूरन वर्मा राजस्थान से।
1: हाँ पूरन वर्मा राजस्थान से ना।
0: हाँ
1: ठीक है ठीक है। और कौन से गाना सुनना है आज आपको?
0: नया दौर का है क्या? नया दौर,
1: नया दौर
0: पुराना वाला।
1: ठीक है, देखता हूँ मैं नया। हाँ नया दौर तो नहीं है, ये नहीं है,
0: नहीं है
1: नहीं है नया नया दौर नहीं है।
0: रोटी,
1: रोटी तो हो सकता है,
0: देखो रोटी हो तो।
1: रोटी कपड़ा और मकान है, रोटी नहीं है।
0: रोटी कपड़ा और मकान है, उसमें
1: हाँ
0: गाना कौन सा है?
1: इसमें पंडित जी मेरे मरने की बात
0: बस यही
1: ना,
0: यही यही पंडित जी मेरे मरने के बाद यही बात
1: ये बजाएगा
0: जी
1: आपको, इतना अच्छा लगा ये गाना।
0: जी जी जी बहुत बढ़िया गान लगता है।
1: ओके लता मंगेशकर का आवाज में है ना।
0: जी जी
1: ठीक है बजा देगा। ठीक है
0: तो मित्रों को याद कर लो,
1: याद कर लो याद कर लो।
0: सबसे पहले तो आपको
1: ओके
0: भगवान सिंह परमार, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, केसरी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, और धर्मवीर है दिल्ली से, आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूर्णिमा जी है विजयपुरम से, अविनाश तेली है, पूनम जी है कानपुर से, राकेश जी है शिमला से, विमल असम से है, और अमल भस्माकारी है, गोल्डी जी है, और अमर सिंह साहू है, भाई को मुंडा है, रमेश पात्रे।
1: ओके ओके थैंक यू सो मच, आपने कॉल कर दिया इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद आपको हमारा कॉल रिसीव करने के लिए।
1: ओके थैंक यू
0: थैंक यू डैन।
1: वेल लिसनर्स कहीं इतिहास होने वो अपना लोग लता मंगेशकर लगा वास्ते फिल्म से रोटी कपड़ा और मकान।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कैसे हैं आप?
0: बस ठीक ठाक हूँ। चलता ही
1: अच्छा, चल रहा है। अच्छा,
0: चल रहा है।
1: ठीक है ठीक है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तेली बोल रहा हूँ।
0: अविनाश तेली ना?
1: जी जी
0: ओके ओके, त्रिपुरा से। ठीक
1: जी जी
0: है ठीक है। कौन से गाना सुनना है आज?
1: आज मुझे सुना देगा जन्नत मूवी से, जो ख्वाबो ख्याल में। हाँ
0: जन्नत। जो
1: के जो ख्वाबो ख्याल में सोचा ना था, के की आवाज में। जी
0: के आवाज में जन्नत,
1: जी जी
0: जन्नत में ये
1: जिंदा।
0: गलत नहीं है।
1: अच्छा, तो
0: जन्नत
1: नाइनटीन
0: में ये
1: ट्वेंटी
0: गाना नहीं है तो
1: अच्छा ठीक है, तो 1920 इविल रिटर्न्स, इसमें देखिए तो
0: नाइनटीन
1: इन।
0: ट्वेंटी इवल रिटर्न्स।
1: इसमें कौन कौन सा गीत है?
0: 1920 इवल रिटर्न्स में तो अपना मुझे तू लगा और उसका ही बनाना जावेदान है, खुद को तेरे और
1: हाँ, खुद
0: मजबूर तू भी कहीं।
1: हाँ खुद को तेरे।
0: महालक्ष्मी आयर का ना?
1: जी,
0: ठीक है, बजा देगा।
1: जी। और मेरे साथ सुनेंगे रमेश प्रजापति जी हैं, भगवान सिंह जी हैं, केसे सिंह हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, पूरन
0: ओके।
1: वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, आशुतोष जी हैं, संगीता जी हैं, प्रेमजीत चक्रवर्ती हैं, और भाईकुन मुंडा हैं, और अमर सिंह साहू जी हैं, और अमर भस्मचारी हैं, बिमल भस्मचारी हैं, और दरासर भस्मचारी, और जितने तमाम सुनने वाले हैं सब के लिए ये डेलीगेशन पर रहेगा। और आप भी सुनिए और एंजॉय कीजिए।
0: ओके, थैंक यू सो मच। आप फोन कर दिए इसलिए। ओके okay?
1: जी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी। वेल लिसनर्स, इतिया हुनी बो को अपने लोग की महालक्ष्मी आयर लका वास्ते से फिल्म से 1920 इवल रिटर्न्स। और ये रे को कुंबाल फोन नंबर हुडी ने पता आसे तो आने मोई तो फोन नंबर को एक बार कोई दिया से अपनी यानी तो फोन नंबर रे कुरवो पारे 0370-224-3036। मैं आरो एक बार कोई दिया से 0370-224-3036। ये तो नंबर अपनी यानी डायल कुरी सी कोले मैं अपनी लगा कॉल तो रिसीव कुरिया होबो।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ हेलो।
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश हरजी।
0: ओके, अब बताइए कैसा है आप।
1: मैं बढ़िया हूँ। उत्तर प्रदेश से यूपी से बात कर रहा हूँ। यूपी जानते हो?
0: हाँ, यूपी जानते हैं, मुझे पता है।
1: हाँ, तो यूपी से बात कर रहा हूँ। यूपी से कई भी कॉल नहीं आती है, वहाँ ही कॉल आती है। आपने इतने प्रोग्राम, ये यूपी कॉल आती है?
0: यूपी का दूसरा कॉल हमने आज तक तो रिसीव नहीं किया।
1: नहीं किया है?
0: आपका ही पहला कर रहा है।
1: हाँ, आज तो मेरा पहला कॉल है यूपी से।
0: आपका नाम, शुभ नाम क्या बताया था?
1: मेरा नाम तो सतीश है,
0: सतीश।
1: सतीश साकिया।
0: ओके।
1: तो आज मुझे गाना सुनवा दिए, पगला कहीं का। उसमें गाना है हाँ,
0: पगला कहीं का? पगला कहीं का कौन से गाना सुनना है?
1: उसमें गाना है बारांदे बीच दिल लगदा।
0: क्या बोला साहब, गाना का नाम?
1: बारांदे बीच दिल लगदा, बारांदा बीच दिल लगदा।
0: तो परांदे विच दिल, परांदे विच दिल ना। ओके ओके, ठीक है, बजा देगा।
1: और आपके इधर मौसम कैसा है
0: मौसम इधर में अभी
1: कोहिमा?
0: बारिश हो रहा है कोहिमा में।
1: अब सर जी, तो मेरे इधर राजा जी आपको बारिश भी दिखाएंगे। और कलिंगे हैं, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, और
0: ओके।
1: ये मौसमी फल है, तो इसका मौसमी फल का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि गर्मी मौसम में ये शरीर के लिए लाभदायक है। और ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए, ऐसे पानी ज़्यादा ज़्यादा पीना चाहिए, शरीर के लिए लाभदायक है।
0: ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: तो आप आ जाइए, आपको तरबूज खिलाएंगे सर जी, और आम भी खिलाएंगे। आपके इधर आम नहीं होते ना तरबूज होते हैं, तो आप मेरे इधर आ जाइए ईपी में।
0: ओके ओके ठीक
1: कब
0: है,
1: आओगे?
0: जब जब समय समय मिलेगा तब तब आ ही जाएगा, पहुंच
1: अरे सर जी, तो
0: जाएगा।
1: आपकी आवाज इतनी मीठी लगती है, आप पता नहीं कैसे बोलते हो, बहुत अच्छी लगती है आपकी आवाज़।
0: ठीक है,
1: आप
0: बहुत
1: सर जी
0: बहुत
1: क्या
0: धन्यवाद
1: आ,
0: आपको।
1: आ, आप क्या खाते हो?
0: मैं जस जैसा जो लोग खाते हैं वही खाता है मैं
1: ओ नहीं,
0: भी।
1: अरे सर जी ऐसा मत छिपाते हो। हमें लगा तो रोज पराठे खाते हो, आलू की रोटी खाते हो।
0: हम लोग तो यहाँ चावल खाते हैं।
1: अरे चावल, चावल तो मेरा फेवरेट भोजन है चावल।
0: चावल खाते हैं हम लोग तो।
1: अच्छा, तब आप आ जाइए, आपको चावल खिलाएंगे, टमाटर डाल के, अदरक डाल के तब खिलाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा टेस्टी।
0: ठीक है ओके, थैंक यू, आप कॉल कर दिए
1: और
0: इसलिए।
1: दोस्तों का नाम, दोस्तों का
0: ठीक है, ले लीजिए, दोस्तों का नाम ले लीजिए।
1: पहले, सबसे पहले आपके लिए गाने डिलीवरी करना चाहता हूँ।
0: ओके
1: और उसके बाद है राकेश शिमला से हैं, अनु कुमार भट्टाचार्य जी हैं,
0: ओके
1: और जितने तमाम फनने वाले हैं, विजय पांडे जी हैं, प्रेम बाबा जी हैं, ओमकार
0: ओके
1: सिंह हैं, सुनील रेंगे, सुहास
0: ओके
1: हैं, अवनीश हैं, और प्रताप हैं,
0: ओके।
1: और उपेंद्र हैं, बाबूलाल अंकल हैं, और विजय पांडे जी तो नाम ले ही लिया, रिंकी है, पिंकी है,
0: ठीक है।
1: और उदिता विश्वकर्मा है, शिवानी है, शबनम है, और कुमकुम है, अंडवा निकोबार से सिप्रा है, मोनिका है, और राकेश लगी लिया है, राम है, पूरन है, गोल्डी है,
0: ठीक
1: विजय
0: है
1: पांडे की लखीरा है,
0: ओके।
1: और अनुपमा भट्टाचार्य तो नाम लगी लिया है। तो जितने तमाम सुनने वाले हैं सबको गाना है, ओमकार और रहेंगे सीतापुर से।
0: ठीक ओके, सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके।
1: बहुत धन्यवाद है।
0: वाल लिसनर्स कहीं थे होने वो अनुराधा पटवाल और लखा लखा वास्ते से फिल्म से पगला कहीं का।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी। मैं राकेश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: हाँ राकेश जी बताइए, आज कैसा है मौसम उधर में?
1: आज मौसम साफ है, कल भी साफ था और अभी लगातार साफ है और थोड़ी 20-25 डिग्री तक तापमान है गर्मी का, और ज्यादा हमारे इधर नहीं होता है ये, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जैसे आपका नागालैंड पहाड़ी इलाका है।
0: हाँ नागालैंड भी पहाड़ी इलाका है। हाँ
1: हाँ, तो ये शिमला भी पहाड़ी इलाका है। आपकी इधर एप्पल होता है?
0: इधर में कोई कोई जगह में होता है,
1: अच्छा, हमारे
0: हर
1: तो
0: जगह में नहीं।
1: अच्छा, यहाँ इधर एप्पल होता है।
0: ओके तो आज कौन
1: जी
0: से

0: गीत सुनना है आपको?
1: फिल्म का नाम है आंदोलन।
0: आंदोलन, ये तो नहीं था वो, आपने गया हुआ बाल समय में भी आंदोलन तो नहीं है। तो
1: अच्छा बलमा है,
0: आंदोलन तो नहीं है मैंने देखा।
1: अच्छा फिल्म का नाम है बलमा।
0: बलमा बलमा भी नहीं है।
1: अच्छा बलमा भी नहीं है, मदहोशी है।
0: मदहोशी
1: जी जी,
0: मधोश है, मधोशी है। हाँ मधोशी है।
1: हाँ उसमें एक गाना है, ओ जाने जाना।
0: ओ जाने जाना, हाँ हाँ हाँ, उदित और सदना सरगम का आवाज़ में।
1: सदना सरगम,
0: ठीक है ठीक है
1: जी। तो मैं कुछ दोस्तों को याद करना चाहता हूँ।
0: ठीक है, याद कर लीजिए।
1: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
0: ओके।
1: पूरन वर्मा, अविनाश तेली, भगवान सिंह कुमार, फुरकाबाद से सतीश और अमल बसमा तार्य तार्य हैं, और अंजलि बसमा तार्य हैं, और रमेश प्रजापति हैं, और तमाम सुनने वाले श्रोता हैं जो अभी जो आपके प्रोग्राम में एक दो कॉल और आ सकता है, तो उनके लिए भी गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है ठीक है, लेकिन वो बसुमतरी नहीं, एक तो बसुमतरी है, एक तो बसु बसु बसुमतरी।
1: अच्छा बसुमतारी। अच्छा
0: एक तो बी ओ और बी ए,
1: बी ओ बी ए,
0: उसमें फर्क है।
1: हाँ फर्क है, लेकिन हमारा ये है ना कि आपकी जो कुछ लैंग्वेज है तो उससे हमें समझ नहीं आता, तो बस मचा जी बोल देते।
0: ठीक है ठीक है, आप लोग तो लिख के भी कभी भेजो एसएमएस पे भी रिक्वेस्ट के लिए। तो
1: वो तो मैं नहीं भेज सकता कि मैं थोड़ा बचपन से ब्लाइंड हूँ और ब्लाइंड के कारण मैं नहीं भेज सकता।
0: ओके ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके एनीवे, थैंक यू सो मच रमेश जी, राकेश जी फॉर योर कॉल। ओके
1: ओके ओके,
0: थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। वेल लिसनर्स कान प्रोग्राम शेष क्रोले टाइम हुई जैसे तो उन्हें प्रोग्राम शेष तो शुनी अपने कि उदित नारायण और सदना सरगम लगा वास्ते से फिल्म आज मधोशी और एक गीत लगते हैं प्रोग्राम तो शेष कर हम कि थैंक यू सो माच अपनी सब कल कर दियारे और सब मानो मिलीगेना इनका जुटी किना शुनी दिया तो जानी बस खुशी आसे ये निचिन नेक्स्ट टाइम तो भी एक फोन इन प्रोग्राम लग कर हम मैं अपनी होस्ट आर जे जेकब अपनी सबके once again wish kuri ase good evening and stay safe kuina aro moyeko apni kanke lock kuri abo that is at 9:30 9:30 30 minute te ko lock kuri abo hindi film gaan program ase tate rj's choice that is moy laga person hindi film gaan program so darshako phir milenge 9:30 me hindi film gaan ka program hai usme phir hum log sunenge rj's choice that is mera pasand ke geet so till then stay safe.

0: State AIDS Control Society ki tanu vorja.
1: Well, my dear friends, welcome back after the break. Or yes, we were just listening to Don't Worry, Be Happy. Or honestly, agar hum soche, agar hamare ye jo life hai na, ye bhi Hindi film ki tarha ya fir ek serial ki tarha hota, kabhi jo villain aata hai, jab bhi ek background music bajta hai, right? Or jab ek hero aata hai, tabhi bhi ek music bajta hai, right? और अगर हमारा लाइफ में भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो कौन सा होता? ये म्यूजिक ही होता ना, डोंट वरी बी हैप्पी, राइट? एंड यस, कभी कभी सम गाने, यू नो, सम सॉन्ग्स फील लाइक अ लॉन्ग रोड, लेट नाइट थॉट्स, सिटी लाइट्स पासिंग बाय एंड ड्रीम्स वी आर, यू नो, हम सभी, वी आर ऑल चेजिंग वन और द अदर थिंग. We know what we are chasing, right? But yes, ये जो next track मैं लाने वाली हूँ, ये उन सभी के लिए है जो life में कहीं ना कहीं, you know, we are waiting for better days, we are waiting for something, or you know, life को बेहतर बनाने की एक आखिरी कोशिश में भी. So let's go and head to fast track, fast cars. This is Tracy Chapman.

Well, yes, my dear friends, that was Fast Car, and I think that truly reminds us that we are all been running, we've all been chasing something that or something better in life, right? And so, kabi kabi na, I mean, life exactly, we should slow down a little bit. Or and yes, I would love to say that, agar, you know, honestly. अगर आपका दिन आज का थोड़ा भी या एग्जॉस्टिंग था तो मे बी यू शुड सिट बैक एंड लेट दिस सॉन्ग कम यू डाउन अ लिटिल बिट वेल इफ़ यू हैव योर मैसेजेस यू आर फ्री टू डू सो सेंड मी योर मैसेजेस यू कैन सेंड इन योर शाउट आउट्स एंड द नंबर इज 9436805333 वेल माई डियर फ्रेंड्स सम ऑफ यू आर सेंडिंग मी SMS रिक्वेस्ट सम रिक्वेस्ट सॉन्ग सो I am really sorry. Aji rati SMS request program nai to karne ami apuni khan laga request to lobo na parbo. But yeah, a very good evening to all of you. Thank you for taking the time to write to us. Aro enikahi huni thakibi because yes, I promise I won't disappoint you. I'll be bringing you good tracks, all right? And yes, let's go ahead and listen to the Beatles. Maybe this song will calm you down a little bit.

Well, yes, that was Let It Be, and I'm sure that song really, really calmed you down a little bit, right? Yes, why don't we change our mood a little bit, right? क्या कहते हो? थोड़ा रॉक वाला गाना एक सुन ले ताकि हम सब जाग जाए, है ना? क्लासिक रॉक, एक क्लासिक रॉक हो जाए, है ना? वेल, बट बिफोर दैट लेट मी क्विकली टेक अ मैसेज. गुड इवनिंग मैम, यू हैव सच अ लवली वॉइस. इट्स सो एंजेलिक. इट्स अत्सितो फ्रॉम चेछामा विलेज. गुड सॉन्ग चॉइस, लिसनिंग विथ स्लीपी हेड. वेल अत्सितो, डोंट स्लीप नाउ माई डियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट. गॉड ब्लेस यू फॉर दैट. ओके, एंड येस, वी ऑल्सो हैव गुड इवनिंग मैम, आई एम फ्रॉम लसुमी क्विक इन अडियर. से वेल माई डियर, इज़ योर नेम लसुमी? यू आर फ्रॉम लसुमी बट यू हैवन गिवन मी योर नेम. सो नेक्स्ट टाइम प्लीज डू राइट इन योर नेम. ऑल राइट. एंड अत्सितो, आई हैव नेवर सीन योर नेम ऑन माई स्क्रीन. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम रीडिंग आउट योर नेम, बट आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव अ न्यू, यू नो, राइटर कमिंग इन इन टू आर फैमिली. सो एनी बडी आउट देयर, यू आर मोस्ट वेलकम. द नंबर इज 9436805333. All right. Yes, so like I said, mood ko thoda classic wala bana dete hain, right? And please, I promise, ye gana sun ke aapko bilkul bhi, you know, you will not feel bored. Instead, main vaada karti hu, aap gaane gaane lagoge. All right, let's go and listen to it.

0: वेल माय डियर लिसनर्स, आप लोगों का ढेर सारा मैसेजेस आ रहा है तो मैं इस बार जल्दी से ले रही हूँ. गुड इवनिंग आरजे वी, नमस्कार. इस बार की गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गर्मी, हाय गर्मी, ओ माय गॉड. लिसनर्स, दुर्गेश नागिनपुरे, राधे श्याम नागिनपुरे, वंदना, भवना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज. दुर्गेश जी, अब क्या कहें, अब यहाँ पे तो रोज़ बारिश हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मी आ रहा है कि सर्दी जा रहा है, कि सर्दी जा रहा है और गर्मी आ रहा है. दोनों में आंदोलन चल रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है. यहाँ पे तो कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी कभी विंटर जैसा फीलिंग आ रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि मौसम जा रहा है या आ रहा है. ऑलराइट, और या अपना ख्याल रखना और बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी पी लेना, क्योंकि यू नो वी नेवर नो कब क्या हो जाए, है ना. तो यस, वी ऑल्सो हैव अनदर मैसेज. प्लीज़ प्ले मी द सॉन्ग कैसे हुलवी माई डियर. अजी रिक्वेस्ट लगा, प्रोग्राम ना होए, दैट्स वाई आई एम रियली सॉरी. वेल, समबडी इज़ आस्किंग माई नेम एंड हाई माई डियर, माई नेम इज़ वेरोनिका. राइट, यू वी हैव दुर्गेश नागिनपुरे, राधेश्याम नागिनपुरे, वंदना, भवना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश, सूरज कुमार, दक्षे, ऑल जॉइनिंग इन. एंड वी ऑल्सो हैव सूरज, ऋषभ, खनक, भवना वर्मा, प्रेमलाल, निकेश, हर्षिता, ममता, भाई वर्मा, ये सभी लोग यू नो इज राइट नाउ ट्यून्ड इन. और यस, वी ऑल्सो हैव अनदर शायरी फ्रॉम आवर डियर दुर्गे जी. दोस्ती हर दिन स्ट्रांग होती जाती है, कभी फेद नहीं होता, कभी फेद नहीं होती आपकी मन पसंदीदा गाना लगातार FM ड्रैगोपैन 103 MHz पर. वेल यस दुर्गेश जी, आपने तो यू नो आपके जो लिखने का अंदाज है हमेशा शो पर चांद चांद लगा देता है. तो इसी वक्त मैं बहुत स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ढेर सारा मैसेज आ रहा है और ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है मुझे. और यस, गुड इवनिंग आरजे वी, आई हैव कम्प्लीटेड 7 years इन FM ट्रागोबान. थैंक यू ऑल आरजेज एंड लिसनर्स फॉर सपोर्टिंग मी. इफ आई हर्ट एनी वन थ्रू माई मैसेज, फॉर गिव मी. आई गिव माई बेस्ट इन सर्विस फ्रॉम रोकोविले मेहता. वेल रोकोविले मेहता, यू आर माई सीनियर. अब नहीं तो मुझे भी सीनियर हुई जैसे, लाइक वेन इट कम्स टू यू नो FM ट्रागोबान. ऑल राइट, बिकॉज मुझे तो आई थिंक इट्स लेस दैन 3 years दैट आई एम been here, right? So my dear senior, या गुड बाय मैसेज दिया जिसना नकरी ना हो मरम रा, हमें बच्चे को रुलाओगे क्या. एनी वेज ला, लगता है लाइक आज रात नॉस्टैल्जिया का मूड चल रहा है. यहाँ पे कुछ गाने ऐसे होते हैं ना, जैसे ही बजने लगता है पुराने यादें ऑटोमेटिकली सामने आ जाते हैं. यू रिमेम्बर राइट, स्कूल डेज, ओल्ड फ्रेंड्स, फर्स्ट क्रैश, योर रैंडम बाइक राइड, सब याद आ जाते हैं. राइट, एंड ऑनेस्टली वी आर गोइंग टू लिसन टू समर ऑफ 69. ऑल राइट, लेट्स गो अहेड एंड वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए और एन्जॉय कीजिए.
1: Good evening, everybody. Here we go.

Well, I am sure you guys were tuned, like, I mean, you guys were tuning in your guitar while the song was playing, right? Some of you might be with a guitar right now and, playing along and humming along. We never know, right? But I am sure you guys are having fun. मज़ा तो आ रहा है ना? I'm sure you guys are having fun because मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है. और yes, we have another message writing in. तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरी हर मुस्कान से मिले मुझे खुशी है. मुस्कुराते रहिए रहने से इसी रहना इसी तरह हमेशा, क्योंकि तेरी इस मुस्कान में मेरी जान बसी है. वाह दुर्गेश जी, वाह वाह वाह. इसी शायरी के वजह से आपको अपना बीवी वंदना वर्मा मिली है ना, मुझे पता है. शायरी लिख लिख के उसे बेचते थे आप. एनीवेज मैं मजाक कर रही हूँ. ऑलराइट, वाओ दैट वाज अ नाइस सॉन्ग. समर ऑफ 69 इज इट प्लेइंग फॉर मी मिस वेरोनिका? ही एनीवेज इट्स मी शुये वितो फ्रॉम फिट्रो. वेल शुये वितो मजा रे हो ए आई कैन से सम चका सॉन्ग राइट. एनीवेज थैंक यू सो मच, दैट वाज बीइंग प्लेड फॉर द सेक ऑफ ऑल टाइम्स. यू नो We all love those kind of tracks, right? Namidi boy and Namidi girl joining in, writing, Good evening, RGV. Aap kaisi hai ji? Very nice song. Namidi ji, Namidi boy or Namidi boy or girl ji, main bahut badhiya hoon ji. Aur main umeed karti hoon ki aap log bhi badhiya hai ji. Aise hi jure rahiye, all right? Aur ruko bhi le, main phir se likhte hain. Someone asked me about my education, so I told I have studied all the stone piece and sand. What about you? Well, Rokavile Meta, we need some Alu scientists also sometimes, nah. Alu scientists bhi kumbha lage, so just tell them whether Alu scientists puri hai noli ki ki uli kui divi da ko no. There is so many degrees in this world these days, so ki ki puri na thakli nobody will know. Okay, the next track is something that you will definitely love it. So वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लीजिए.

Alright, we also have another message. तो जल्दी से ले लेते हैं. Alright, well, आज भी everyone has money sickness instead of love sick. What about you from Rockville में था कौसे? Oh, Rockville में था. I have a love sick for FM listeners. Okay, I am addicted to all of you, so that is my sickness maybe. And what about you, Rockville में था? You have money sickness or what sickness do you have? Anyways, that was quite interesting, right? And somebody is asking me, sis, which tribe are you? I say, well, my dear, I'm from Angami tribe. Okay, well, I hope I have cleared that. I'm from Angami tribe, okay? And yes, all right, the next song that I'm bringing, okay? You mind you, ये ना एक feeling है. कभी stadiums में सुना होगा, कभी किसी स्कूल फंक्शंस में, कभी किसी सेलिब्रेशन में, और वहाँ पर आप भी ज़रूर होते होंगे, ओके? और एक इंटरेस्टिंग बात है, किसी को भी ना, वी डू नॉट नीड टू किसी को भी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. बीत की कोई समझ किसी को भी नहीं है, लेकिन सडनली क्लैप क्लैप स्टॉम स्टॉम बस इतना ही काफ़ी है. एंड सडनली एवरी वन इज टुगेदर. सो आर यू रेडी टू क्लैप एंड स्टॉम्प? आई होप यू हैव ऑलरेडी गेस द सॉन्ग. ऑलराइट, हैव अ लिसन. आई एम श्योर यू विल स्टार्ट यू नो क्लैपिंग एंड स्टॉम्पिंग योर सेल्फ.

वेल माय डियर लिसनर्स, आई होप आप सभी को भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझे आप लोगों के लिए ये गीत बजाते हुए। और वक्त होने को आया है, मुझे चलने को तैयार करना चाहिए, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे और भी गाने बजाने हैं आपके लिए। ऑलराइट, अभी कभी कभी लाइफ में एक स्टॉर्म जैसा होता है ना, तो आपने क्लैप क्लैप स्टॉम स्टॉम किया क्या? एनीवेज, म्यूज़िक को एनर्जी को, यू नो, म्यूज़िक और एनर्जी को मैच करते हैं, और लेट्स लिसन टू रॉक यू लाइक अ हरिकेन।

0: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया

0: है उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात

0: पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect।
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the four European countries.
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल को।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है।

0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी

भरी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।